सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। सुबह के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.8 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आइए अब हम आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज कौन कौन से कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक होगा सेवा भावना। अक्षय निधि कार्यक्रम 7:10 पर आप सुनेंगे, जिसमें ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से आज सूक्त 10 हम आपको सुनवाएंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम 7:20 पर आप सुनेंगे। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आज केंद्रित होगा फादर कामिल बुल्के की जयंती पर। प्रसारण समय 8:00। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे 6:00 से। 8:30 पर होगा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। आज का विषय पर्यावरण संरक्षण और कानून। योग संवाद कार्यक्रम में आज 9:00 आप सुनेंगे क्षणभंगुर संसार और सदपुरुषों की दुर्लभता, डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से सुनीता सिंह की बातचीत। 9:30 पर विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संगीत कार्यक्रम। 10:00 होगा परिक्रमा कार्यक्रम और साथ ही साथ रेडियो रिपोर्ट में आप सुनेंगे रासलीला का दिवस दूसरा। 10:30 पर होगा कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा, जिसमें आज आप सुनेंगे टीपू सुल्तान। 9:00 कार्यक्रम में आज मानसिक स्वास्थ्य पर आप सुनेंगे डॉक्टर जेपी अग्रवाल मनोचिकित्सक से पूर्वाखले की खास बातचीत। प्रसारण समय 11:00 और 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। इस कार्यक्रम का 33वां भाग आज आप सुनेंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, जिन्हें आज आप सुनेंगे अब से रात्रि 10:00 तक। तो जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: एक संत ने एक विश्वविद्यालय आरंभ किया। इस विद्यालय का उद्देश्य था ऐसे संस्कारी विद्यार्थियों का निर्माण जो समाज के विकास में सहभागी बन सकें। एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित तिथि को निर्धारित वक्त पर विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता आरंभ हुई। किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की तभी सेवा कर सकते हैं जब हमारे पास उनके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वहीं कुछ छात्रों की राय ये भी थी कि सेवा के लिए संसाधन नहीं भावना का होना जरूरी है। इस तरह तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए आया ही नहीं था। ये देखकर अन्य विद्यार्थियों और शैक्षिक सदस्यों में रोष उत्पन्न होने लगा। संत सबको शांत कराते हुए बोले, प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सब उस द्वार से अंदर आए पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। ये अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया, उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। सेवा सहायता डिबेट का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वो पुरस्कार पाने के योग्य नहीं है। चरण छोड़िए, आचरण पकड़िए।
1: जीवन सौरभ।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 10वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता है अग्नि और छंद है त्रिष्टुप।
4: जो हुत्रो अग्नि प्रथमः पिते वेदस्पदे मनुषा यत् समिद्धः श्रियं वसानो अमृतो विचेता ममृजेन्यः श्रवस्यः सवाजी। जो अग्निदेव यज्ञ स्थल में मनुष्य द्वारा प्रज्वलित होते हैं वह पिता के समान पालक प्रमुख तथा पूज्य होते हैं। वे अग्निदेव शोभायुक्त अमर विविध ज्ञानों से युक्त अन्नवान बलशाली तथा सभी पदार्थों को पवित्र बनाने वाले हैं, इसलिए वह सबके द्वारा पूज्य भी हैं। श्रूया अग्निश्चित्र भानुर्हवम मे विश्वाभिर गीर्भिरमृतो विचेताः श्यावा रथम वहतो रोहिता वोतारुषाह चक्रे विभ्रतः। अमर विशेष ज्ञान से युक्त अद्भुत कांतिमान अग्निदेव हमारी सभी प्रकार की वाणियों से की गई प्रार्थना को स्वीकारें। अग्निदेव के रथ को श्याम वर्ण वाले, लाल वर्ण वाले तथा शुक्ल वर्ण वाले घोड़े खींचते हैं। वे अग्निदेव विविध स्थानों में भ्रमण करते हैं। उत्तानाया मजनस्यन्तु सुषूतम् भुवदग्निः पुरुपेशासु गर्भः शिरिणायां चिदक्तुना महोभिरपरिवृतो वसति प्रचेताः। नाना प्रकार की औषधियों काष्ठ में अग्निदेव गुप्त रूप से विद्यमान होते हैं। उनको मंथन द्वारा अध्वर्युगण उत्पन्न करते हैं। ये रात्रि में अपने तेज के कारण अंधकार से आच्छादित न होकर सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। जिघर्म्यग्निम् हविषा घृतेन प्रतिक्षियन्तम् भुवनानि विश्वा पृथुम् तिरश्चा वयसा बृहन्तम् व्यचिष्ठमन्नै रभसम् दृशानम्। संपूर्ण भुवनों में संव्याप्त महान तेजस्वी काष्ठ आदि पदार्थों से खूब फैलने वाले तिरछी ज्वालाओं से युक्त सुंदर दर्शनीय अग्निदेव को हम घृत और चरु से सिंचित करके प्रदीप्त करते हैं। आविश्वतः प्रत्यंचम जिघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जुषेत मर्यश्री ही स्पृहद्वर्णो अग्निर्नाभिमृषे तन्वा जर्भुराणः। सर्वत्र व्याप्त अग्निदेव को हम घृत से सिंचित करके प्रदीप्त करते हैं। हे अग्निदेव, समर्पित घृत की आहुतियों को शांतिपूर्वक ग्रहण करें। मनुष्यों द्वारा पूज्य कांतिवान अग्निदेव जब तेजस्वी रूप में प्रदीप्त होते हैं तब कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ज्ञेया भागम सहसानो वरेण त्वादूतासो मनुवद वदेम अनूनमग्निम जुहवा वचस्या मधुप्रचम धनसा जोहवीमि। हे अग्निदेव, आप अपनी शत्रु निवारक शक्ति से विजय प्राप्त करते हुए हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। हम आपकी मनु की तरह दूत रूप में स्तुति करते हैं। मधुरता युक्त धनदाता अग्निदेव को हम स्तुति पूर्वक घृत की आहुतियां प्रदान करते हैं।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 10वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर। तो जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति को कठिन बताता हो उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए। उसका संग भक्त के लिए महान घातक है। जो सुगमता से प्राप्त होने वाले परमात्मा की प्राप्ति को कठिन माने उसको परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से कैसे होगी।

शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर भगवान की हम वंदना करते हैं।

जिसका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय यानी मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है।

जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष परब्रह्म में नित्य स्थित है।

जिनका मन ब्रह्म रूप हो रहा है और जिनकी बुद्धि ब्रह्म रूप हो रही है, जो निरंतर ब्रह्म में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं।

उन्हें करता हुआ और ना ही करवाते हुए ही नौ द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहे। आत्मा मनुष्य के ना तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करता है, किंतु इसमें स्वभाव

श्रोताओं, ये था भक्ति संगीत कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम देश का चैनल देश के लिए। सुबह के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फादर कामिल बुल्की की जयंती।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के एक छात्र ने अपने प्राध्यापक के कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, मे आई कम इन सर। इतना कहते ही दरवाजा खुला। एक अत्यंत शांत, सौम्य और साधु पुरुष गर्दन पर भागलपुरी सिल्क की चादर लपेटे सामने खड़ा था। उन्होंने धीरे से गंभीर स्वर में कहा, अभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए आपने किस भाषा का व्यवहार किया? क्या आपकी कोई बोली या भाषा नहीं है? आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, फिर भी विदेशी आंग्ल भाषा का व्यवहार हिंदी के एक प्राध्यापक के पास आकर क्यों कर रहे हैं? छात्र अवाक खड़ा रहा। प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी उन्होंने। पूछा, आपकी मातृभाषा क्या है? छात्र ने उत्तर दिया, सर मैथिली। जवाब सुनकर उन्होंने कहा, आइंदा जब आप मेरे पास आएं, तो मैथिली या हिंदी में ही बात करेंगे, अंग्रेजी में कदापि नहीं। अपनी मातृभाषा को सम्मान देने की सीख देने वाला ये प्राध्यापक कोई भारतीय नहीं था, बल्कि ये थे बेल्जियम से भारत आए मिशनरी फादर कामिल बुल्के। इनका जन्म सन 1909 में बेल्जियम के रैम्स चैपल नामक गांव में हुआ था। बचपन अभाव और संघर्ष से भरा था और पढ़ाई कई स्थानों पर जारी रही। यद्यपि 1930 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण अध्यात्म की पुकार से प्रेरित होकर अपने माता पिता से संन्यास की अनुमति ली और सन 1930 में ही वे जेसुइट बन गए। सन 1932 में उन्होंने रोम से दर्शन शास्त्र में एमए किया और सन 1934-35 में मिशनरी कार्यों के लिए भारत आए। भारत में काम करना उन्हें इतना प्रेरणादायक लगा कि वे फिर भारत में ही बस गए। शुरुआती दौर में उन्होंने दार्जिलिंग के एक स्कूल में गणित पढ़ाते हुए खड़ी बोली, ब्रज और अवधी सीखी। उन्होंने सन 1938 में सीतागढ़ हजारीबाग में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत सीखी। सन 1940 में उन्होंने प्रयाग से विशारद की परीक्षा पास की और फिर 1942-44 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। भारतीय संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि के चलते फादर कामिल बुल्के ने रामकथा पर डीफिल किया। बाद में गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का गहन अध्ययन कर उन्होंने सन 1950 में रामकथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की। इस शोध संकलन में उन्होंने बताया कि राम वाल्मीकि के कल्पित पात्र नहीं, वे इतिहास पुरुष थे। तिथियों में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, लेकिन इस शोध ग्रंथ में उन्होंने बताया कि रामकथा केवल भारत में ही नहीं बल्कि वियतनाम और इंडोनेशिया तक फैली हुई अंतर्राष्ट्रीय कथा है।

सन 1950 में ही फादर कामिल बुल्के बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की कार्यकारिणी सभा के सदस्य नियुक्त किए गए। 1972 से 77 तक वे भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर कामिल बुल्के लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, फ्लेमिश, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत जैसी विश्व की कई भाषाओं के ज्ञाता थे। गहन शोध, अध्ययन और मीमांसा उनकी विशेषता थी, लेकिन हिंदी के प्रति उनका अनुराग अद्भुत था। डॉक्टर कामिल बुल्के लंबे समय तक रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में संस्कृत तथा हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। अपने समय के हिंदी भाषा के सभी चोटी के विद्वानों से उनका संपर्क था। डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामस्वरूप, डॉक्टर रघुवंश, महादेवी वर्मा आदि से उनका विचार विमर्श और संवाद लगातार होता रहता था। महादेवी वर्मा को वे दीदी कहते और इलाहाबाद के लोगों को मायके वाले। डॉक्टर कामिल बुल्के इलाहाबाद के अपने प्रवास को अपने जीवन का द्वितीय वसंत कहते थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उनके प्रेरणा स्रोत थे, जिनके कहने से ही उन्होंने रामकथा पर अपना शोध ग्रंथ लिखा। अपने अध्ययन पूर्ण इस शोध ग्रंथ में उन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित रामकथाओं के अनुशीलन के साथ उनके वैविध्यपूर्ण समंजन को स्पष्ट किया। उत्तर में तिब्बत तथा बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि पूर्वी एशियाई देशों में प्रचलित रामकथा के सौंदर्य और उनके सांस्कृतिक प्रभाव का भी इस ग्रंथ में उन्होंने विस्तार से विवेचन किया है। गोस्वामी तुलसीदास की राम भक्ति के सात्विक और आध्यात्मिक आयाम के प्रति उनके मन में बहुत आदर था। उनका कहना था, जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ईसा, हिंदी और तुलसीदास, ये वास्तव में मेरी साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं बल्कि गहरा संबंध है। डॉक्टर कामिल बुल्के हिंदी भाषा, तुलसीदास और वाल्मीकि के अनन्य प्रेमी और भक्त थे। उनके शोध ग्रंथ के एक प्रसंग में संस्कृत और इंडोनेशियाई विद्वान होयलास के सवाल पर एक अध्येता का जवाब आता है कि वे रामायण को और भी अच्छा मनुष्य बनने के लिए पढ़ते हैं। रामकथा के इस विस्तार को फादर बुल्के वाल्मीकि की दिग्विजय कहते थे, यानी भारतीय संस्कृति की दिग्विजय। वो कहते थे कि तुलसीदास के कारण मैंने वर्षों तक रामकथा साहित्य का अध्ययन किया है। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से जिस भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है उसमें नैतिकता तथा भक्ति के अनिवार्य संबंध पर बहुत बल दिया गया है। तुलसी के इष्ट देव राम हैं और मैं ईसा को अपना इष्ट देव मानता हूँ, लेकिन हम दोनों के भक्ति भाव में बहुत समानता पाता हूँ। दरअसल उनमें भी तुलसी जैसा ही भक्ति भाव, प्रेम, विनती और समर्पण था। उनका कहना था कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। यदि हम मनुष्य को प्यार नहीं कर सकते तो ईश्वर को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। मानवता और प्रेम के इसी सार्वजनिक भाव ने उन्हें भारत की धरती से जोड़े रखा। रामचरितमानस उनके लिए केवल महाकाव्य नहीं था, वो उनके लिए एक ऐसा जीवन दर्शन था जो उन्हें अपनी आत्मा के निकट लाता था।

फादर कामिल बुल्के का मानना था कि गोस्वामी तुलसीदास रामकथा परंपरा के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका को पढ़ते हुए उनके हृदय में तुलसीदास के लिए जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, उससे उन्हें ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां मिली जो उनके जीवन का स्थायी भाव बन गईं। उनकी दृष्टि में तुलसीदास विश्व के महान कवियों में थे जिनकी रचनाओं में ज्ञान का अक्षय भंडार छिपा है। वो अक्सर कहते थे कि कला और साहित्य मानव जीवन की गहन उपलब्धियां हैं, क्योंकि मनुष्य की उच्च कल्पनाएं और गहरी अनुभूतियां इसमें अभिव्यक्त होती हैं। इसलिए अध्यात्म भी उन्हें मानव जीवन के उद्देश्य से अलग नहीं कर सकता है। हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने आकर्षण के चलते सन 1951 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। वे आजीवन हिंदी की सेवा में लगे रहे। बुल्के ने बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। मॉरिस मेटरलिंक के प्रसिद्ध नाटक द ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से अनुवाद किया। छोटी बड़ी कुल मिलाकर उन्होंने 29 किताबें लिखीं। हिंदी भाषा साहित्य पर काम करते करते हिंदी भाषा की शब्द संपदा से डॉक्टर कामिल बुल्के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक शब्दकोश टेक्निकल इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी ही बना डाला। इस शब्दकोश का इतना स्वागत हुआ कि बाद में अथक परिश्रम कर उन्होंने एक संपूर्ण अंग्रेजी हिंदी कोश बनाया जो आज भी हिंदी भाषा का प्रामाणिक शब्दकोश माना जाता है। विशेष बात यह है कि उनके अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग की राह को सुगम बनाया है। उनका पुस्तकालय, जो आज फादर बुल्के शोध संस्थान कहलाता है, इसमें असंख्य किताबें हैं जो उन्होंने अपने खर्चे से मंगवाई थीं, और आज भी कितने ही विद्यार्थी उसका लाभ उठा रहे हैं। फादर बुल्के कहते थे कि दुनिया भर में शायद ही ऐसी कोई विकसित साहित्य भाषा हो जो हिंदी की सरलता की बराबरी कर सके। उनकी हिंदी सेवा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण की उपाधि प्रदान की। भारत की मिट्टी में रची बसी उनकी आत्मा राम कथा रसपान करती हुई 17 अगस्त सन 1982 को इस दुनिया से विदा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी ने कहा, मैंने उनमें हिंदी के प्रति हिंदी वालों से कहीं अधिक गहरा प्रेम देखा, ऐसा प्रेम जो भारतीय जड़ों से जुड़कर ही संभव है। उन्होंने रामकथा और रामचरितमानस को बौद्धिक जीवन दिया। विभिन्न धर्मों की आंतरिक एकता के ऐसे अनन्य उपासक को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए, आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
1: धन्यवाद मनीषा जी।
0: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
1: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए
0: जी।
1: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्र गीत की, तो राष्ट्र गीत के वो जो दो छंद है वही अपने आप में काफी है पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका अर्थ यही है। यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण के बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो। इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
1: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है
0: जी।
1: हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो उसे उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें। और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर है।
0: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
1: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं। और वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास 1 मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके, वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वहीं आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है, अब लोग सजग हो गए।
0: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
1: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
0: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
0: जी।
1: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
0: जी।
1: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, इंटरजेनरेशनल इक्विटी
0: जी।
1: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है और बच्चों की क्या माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में एक बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं।
1: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन है, फिर 2019 नोटिफिकेशन है। इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है
0: जी।
1: भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति, सब बदल जाती है
0: जी। आपने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
1: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेशा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है, इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देख कर ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहाँ पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं। यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है, जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
0: जी।
1: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है, ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है। वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
0: भूमिका की बात तो हो गई, लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
1: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीज़ें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा, जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं, आज की तारीख में बहुत सिंपल आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
0: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी वो ये भी थी कि हम हमेशा हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्वजिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
1: एकदम सही बात,
0: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
1: और तो, इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
0: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
1: एकदम सही।
0: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
1: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं, ये एक बेसिक चीजें हैं
0: जी।
1: और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें, ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
0: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
1: एकदम,
0: अगर
1: एकदम।
0: हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दांव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
1: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में, जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है
0: जी।
1: बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें
0: जी,
1: स्वयं लिखे और भेजे
0: जी। पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक?

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, समय की हथेली पर ठहरा कोई भी क्षण कभी स्थायी नहीं होता। भोर की पहली किरण संध्या में ढल जाती है, फूलों की मुस्कान भी एक दिन मुरझा जाती है, उपवन की रंगत नीरवता बन जाती है और जीवन देखते ही देखते स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन जाता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो दिखाई देता है वो भी एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएगा। किंतु इस नश्वरता के बीच एक सत्य ऐसा भी है जो कभी क्षीण नहीं होता, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश। भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। इसमें बताया गया है कि संसार की क्षणभंगुरता भय का विषय नहीं बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो मोह के बंधनों से ऊपर उठकर शांति, विवेक और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद में आज इसी क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता विषय पर चर्चा करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में
1: जी,
0: और हम उस पृष्ठ पर हैं जहां क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर चर्चा है
1: जी।
0: तो मैं चाहती हूं कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इस संसार के प्रति आकर्षित चित्त को कहीं भी विश्राम क्यों नहीं मिलता है।
1: इसलिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु से कि तात इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी दृष्टि में चित्त को विश्राम प्रदान करे। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल क्रीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, युवा अवस्था में मन विषयों की तरफ भागता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है उस समय सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। राम जी कह रहे हैं कि ये प्राण भी छोड़ करके शरीर को दूर चला जाता है और मनुष्य इस संसार सरोवर में सिर्फ शुष्कता को प्राप्त होता है
0: जी।
1: उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो ये जो चित्त है, चित्त को ठहरने की स्थिति संसार में कहीं नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, क्षण में जी। परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम विषयों से आसक्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक हमारे चित्त को शांति देगा। हम अपने अनुभव में भी अगर ध्यान दें, थोड़ी सावधानी से देखें
0: जी,
1: उसे
0: जी।
1: तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जिन विषयों में बहुत सुख और शांति की कल्पना करते थे, उनकी प्राप्ति के बाद हम सुखी और शांत नहीं हुए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये राम जी चूंकि उस समय उत्कट वैराग्य उनको हुआ है विवेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्षणिक मिलता है विश्राम, लेकिन आत्यंतिक विश्राम नहीं मिलता जहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति हो सके।
0: जी जी
1: जी।
0: अच्छा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो संतोष है वो परम सुख है, उसे ही सबसे बड़ा धन भी कहा गया है
1: जी।
0: तो मनुष्य इससे वंचित क्यों होता, कौन है जो मनुष्य को संतोष से वंचित कर देता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी कहते हैं कि इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तृष्णा जो है आपको किसी भी पदार्थ के साथ सुखी नहीं होने देगी। जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति होगी फिर तृष्णा किसी और की होगी
0: जी।
1: तो ऐसे में तृष्णा रूपी नदी संसार में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए जो संतोष को परम सुख माना ऋषियों ने
0: जी, जी,
1: वो इसलिए कहा। जबकि आज के समय में आप देखें तो संतोष की अवहेलना करने की बात की जाती है कि संतोष करने का मतलब हुआ कि आप तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे, विकास करना है तो आपको लगातार तृष्णा की नदी में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी अवधारणा ही बड़ी अलग है। चूंकि ये वैराग्य प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण से हम कह सकते हैं कि संसार के सत्य का अन्वेषण करते हैं या संसार के सत्य को देख पाते हैं। और जब संसार में कभी असफलता लोगों को प्राप्त होती है तो भी लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग्य एक प्रकार का पलायन उत्पन्न करता है, वो रोग का रूप ले लेता है। लेकिन ये विवेक से जो उत्पन्न जो वैराग्य है वो संसार में चित्त में जो राग और द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति है उसको शांत करता है।
0: जी,
1: तो विवेक का जो वैराग्य है वो स्वीकार्य है, लेकिन अज्ञानता में उत्पन्न वैराग्य मानसिक रोग का कारण बन सकता है।
0: अच्छा, एक बड़ी रोचक सी बात आपने कही कि एक उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है कि अब छलांग लगाइए तृष्णा की नदी में। ये बात सही है कि खूब सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, ये बात बहुत होती है इन दिनों।
1: जी जी,
0: तो जो मनुष्य है वो जीवन में सपने देखना बंद कर दे ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया।
0: दृष्टि कैसी हो?
1: दृष्टि ऐसी हो कि संतोष हो। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी नदी है इसको हम समझें कि हम तृष्णा के वशीभूत ना हो जाएं। वो कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी नदी जो है ये संतोष रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, यानी संतोष की जड़ को खोद देगी ये, और जब संतोष की जड़ खुद जाएगा तो फिर सुख से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सुख शास्त्रों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋषियों की दृष्टि में संतोष को परम सुख का कारण माना गया। संतोष में सुख होता है, योग में कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोष ही परम सुख है। तो जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान, लेकिन यहाँ पर तृष्णा की नदी में तो संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि ये नदी उस संतोष के वृक्ष के जड़ को खोद डालेगी। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से हिलती डुलती रहती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि शरीर में क्षुधा पिपासा ही उत्पन्न होती है जिसकी वजह से जीव हिलता डुलता है। और कहते हैं पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह हैं, इसको इंद्रियों से जो हम सुख लेने की बात करते हैं उस इंद्रियों को ग्राह की संज्ञा दी गई है जिसने उस हाथी को या कह सकते हैं पकड़ रखा है। तो ग्राह है ये, लगातार इसे टक्कर मारकर डूबोने में लगा रहता है। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव ही बैठे रह सकते हैं और वो विवेकी ही अपने आप को संभाल सकते हैं। जहां तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार के वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर वृक्षों की शाखाओं पर भटकते रहेंगे, मरकट की भांति कूदते रहेंगे इस डाल से उस डाल।
0: अच्छा, ये बताइए कि संसार में किस प्रकार के महात्मा दुर्लभ हैं?
1: इसके लिए श्री राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, ऐसे महात्मा इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जरा देखिए, कह रहे हैं राम जी की दुख और मोह से जो अपने आप को हमेशा दूर रखता है। जब भी आपत्तियां आती हैं तो आप देखें तो व्यक्ति आपत्तियों से दुखी होता है, और आपत्तियों के आने का मूल कारण होता है मोह। क्योंकि मोह अगर ग्रस्त आप नहीं हैं तो आप आपत्ति का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है संसार में। आमतौर पर आपत्ति आने पर लोग दुखी होते हैं या फिर मोहग्रस्त होते हैं संसार के विषयों से, या फिर ना भी विषयों से तो अपने कार्य जो नित्य कर्म है उसके प्रति भी कई बार व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और संपत्ति पर जिसको अहंकार शून्यता ना हो। आमतौर पर स्वास्थ्य और संपत्ति को लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ कोई उपलब्धि है, और अहंकार में आदमी सोचता ही है कि ये तो हमने नियमित जीवनचर्या अपना रखी है, इस नाते मैं स्वस्थ हूँ। सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर यहाँ पर भी आप अहंकार शून्य हैं, यहाँ पर भी आपके अंदर उस कहते हैं परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है इस समय खोज पाना। तो क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि अहंकार से युक्त भी लोग दिखाई देते हैं, महात्मा लोग।
0: एक तरह से वो ये बता रहे हैं कि महात्मा को कैसा होना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं। महात्मा जो होगा वो अहंकार शून्य होगा, वो कभी भी किसी भी विषय से चाहे अपने त्याग और तपस्या को लेकर के भी अहंकार से ग्रसित नहीं होगा।
0: अच्छा, श्री राम जो कुछ देख रहे हैं उसमें वो शूरवीर भी देख रहे हैं, तो किसे वो कह रहे हैं कि संसार में शूरवीर कौन है?
1: राम जी कहते हैं कि इस संसार में मैं शूरवीर उसे मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। यानी जो मन आपको विवेक वैराग्य से दूर ले जाएगा
0: जी,
1: यानी वो तृष्णा की नदी में आपको बहाना चाहेगा, संतोष रूपी वृक्ष की जड़ों को खोदना चाहेगा। फिर ऐसे में जो लोग विवेक और वैराग्य के द्वारा इसको लांघ जाते हैं, यानी मन रूपी तरंगों के पार चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तरंगों के पार जाने का मतलब हुआ, ये संकेत समझें कि जहाँ जल शांत है वहाँ कोई उस लहर नहीं है, उसमें
0: कोई उथल पुथल,
1: उथल पुथल नहीं है,
0: नहीं है।
1: तो ऐसे लोग को मैं सूरवीर मानता हूँ जो उस शांति को अनुभव कर रहे हैं। इस संसार में अशांत चित्त नहीं है, क्योंकि जब तरंगे उठेंगी
0: तो उनके हिसाब से सूरवीर वो है जिसका चित्त शांत हो, हर परिस्थिति में
1: शांत हो। बिल्कुल ठीक है,
0: वो
1: वीर है। अन्यथा तो संसार में कई बार आदमी अपने पुण्य को लेकर के बहुत आह्लादित होता है
0: जी,
1: कई बार अपने पाप को लेकर बहुत भयभीत होता है। तो ऐसे में इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, करणीय और अकरणीय के भेद में वो भेद बुद्धि से उलझा हुआ है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग सूरवीर नहीं है। सूरवीर वो हैं जहां तरंगे शांत हो गई हों और चित्त बिल्कुल शांत हो, यानी मन रूपी उत्ताल तरंगों को जो पार कर गए हों, और वो पार आप कर सकते हैं विवेक और वैराग्य से, राग और बुद्धि से पार नहीं किया जा सकता।
0: अच्छा, संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की कामना सभी को है
1: जी,
0: तो क्या कहते हैं श्री राम के लक्ष्मी की जो परिपूर्णता है वो किस तरह से होती है?
1: देखिए, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मी की परिपूर्णता क्षमा, विनय और उदारता आदि सात्विक बलों से होती है। ये सात्विक बल हैं
0: जी।
1: एक कथा भी आती है पुराणों में कि जब लक्ष्मी जी अपने वर का चयन कर रही हैं तो ऐसे में उनकी एक शर्त है कि जो मुझे नहीं चाहेगा वो हमारे चाह का विषय होगा। और
0: जी, जी,
1: लक्ष्मी
0: जी,
1: को चाहने के लिए सारे देवता व्याकुल हैं। हर लोग चाहते हैं कि वरमाला उनके गले में डाल दें वो, लेकिन एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जो शांत बैठे हुए हैं, तो उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है। तो लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित होती हैं और जाकर के वरमाला उनके गले में डाल देती हैं। तो ऐसे में विष्णु जी का जो चरित्र है वो क्षमा, विनय, शांत, उदारता का है। तो लक्ष्मी इसी सात्विक बल से परिपूर्णता प्रदान करती हैं। अन्यथा लक्ष्मी को प्राप्त करके कभी कोई संतोष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, यानी लक्ष्मी जब अकेले होती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं वो, और वो जब विष्णु के साथ होती हैं तो गरुण की सवारी करती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मी सेवा करती विष्णु की नजर आती हैं, बाकी सब लोग लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रतीक बताया गया है कि सात्विक बल ही है जो लक्ष्मी को प्राप्त करके परिपूर्णता की अनुभूति कराता है। अगर ये बल आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी असंतोष और बेचैनी का कारण बनेगी।
0: तो बहुत रोचक सी बात है कि लक्ष्मी की कामना हो लेकिन मन फिर कैसा हो, विष्णु जी
1: सात्विक बल के साथ हो
0: जी, जी।
1: आप राजसी होकर के लक्ष्मी के साथ स्थिर नहीं हो सकते।
0: योग वासिष्ठ में मुझे नजर आ रहा था कि संपत्ति और विपत्ति के जो कारण हैं कुछ बताए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप बता दें कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्यों आते हैं, क्या कारण है इसका?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्ति विपत्ति को हटाना चाहता है, संपत्ति को पाना चाहता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है, राम जी ये कह रहे हैं कि ये किसी के चाहने से नहीं होता। आप चाहें कि आपके जीवन में दुख ना आए तो ये आपके चाहने से नहीं होगा, बल्कि कई बार तो हम नहीं चाहने की वजह से उन चीजों को आकर्षित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं बार बार उसे याद करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ये संपत्ति और विपत्ति जो है वो प्रारब्ध कर्म से आती है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व का कर्म है जिसकी वजह से जीव देह धारण करता है, और जब देह धारण करता है तो देह के भोग भी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों उसे मिलते हैं। प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर है जो निकल पड़ा है, और उसे भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। कोई चाहे कि प्रारब्ध से अपने आप को हम बचा लें, और बचाने के लिए अगर प्रयास करके बचा भी ले तो भी उसे फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोग उसका है। इसीलिए ये मानव जो तन है या मानव योनि है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ऐसी योनि है कि आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करके अपने क्रियामाण, जो कर्म आप कर रहे हैं और जो उस कर्म का फल संचित हो रहा है, इन दोनों को आप रोक सकते हैं और प्रारब्ध को भोग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़े हैं। और भगवान के अवतारों की कथा देखें तो वो प्रारब्ध बस पूर्व के कर्म का वो परिणाम ही तो भोगने आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए? प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध कर्म का वो हेतु बनता है
0: जी। अच्छा, असावधान मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो संसार को किस तरह से देखती, कैसा दिखता है उसको संसार?
1: असावधान मनुष्यों की बुद्धि में यह संसार चिरस्थायिता की प्रतीति कराता है। तो जब इस संसार में हम किसी चीज को स्थाई देखते हैं तो इससे ये समझ लें कि हमने सावधानी पूर्वक संसार को नहीं देखा
0: नहीं
1: है
0: देखा।
1: अगर सावधानी पूर्वक देखें तो यहाँ पर सारी चीजें क्षण में नष्ट हो रही हैं। महात्मा बुद्ध ने जो क्षणभंगवाद उन्होंने बताया कि संसार में हर चीज क्षण में भंग हो रही है, उन्होंने सावधानी के साथ इस चीज को जाना। इसीलिए आप देखते होंगे कि बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस उनकी एक मेडिटेशन टेक्निक है कि आप इतने सजग रहें कि जहां पर आपको संसार के सत्य से कभी भी वंचित ना होना पड़े। यानी सत्य संसार का क्या है? क्षणभंगुरता। तो वो क्षणभंगुरता आपको निरंतर दिखाई दे, लिहाजा आप संसार में कभी भी राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे, आपका चित्त शांत होगा। क्योंकि जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो भी क्षण में मिट जाएगा और जिसके प्रति आपको राग है वो भी, उसकी भी अवधि क्षण भर की है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके चित्त में जो राग देशात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी शांति आनी चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। ये तब होगा जब आप सावधान होकर के इस संसार को देखेंगे। तो संसार को सावधानी से देखने के बाद यहाँ संसार में स्थायित्व तो नहीं दिखता और असावधानी पूर्वक जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं या संसार में जो भोगों में संलग्न हैं उनको संसार में चिरस्थायिता की प्रतीति हो रही है।
0: अच्छा, इसमें मनुष्य को अपराधी और उपकार शून्य प्राणी कहा,
1: जी
0: ऐसा क्यों कहा?
1: ऐसा इसलिए कहा कि अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेम की बात राम जी करते हैं
0: जी।
1: कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसा है, ये मतलब कहते हैं कि दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा वो मानता है अपने आप को। ऐसा विश्वास करने का कारण क्या है कि जब इस संसार में श्वास को देने वाला पेड़, कहते हैं कि श्वास जगत में सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि जीवन का संबंध श्वासों से है और उन श्वासों का प्रदाता वो वृक्ष है जो मनुष्य अपने भोग या अपनी आवश्यकता के लिए उसको भी काट देता है। तो कहते हैं ऐसा उपकार शून्य प्राणी इस संसार में सदा जीवित रहेगा, ये कैसे भरोसा करने की बात है जब वो पेड़ों के उपकार को भूल करके उसे भी काट दे रहा है।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: एक दिन वो भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा।
0: तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात भी यहां आती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि चित्त को शांत स्थिर करने की बात थी, लगातार हम सुन रहे हैं लक्ष्मी के संदर्भ में आपने ये कहा कि जिसके चित्त में उद्वेलन न हो लक्ष्मी उस तरफ आकर्षित होती है। अशांत कौन रहता है?
1: अशांत रहता है विषयासक्त मनुष्य। आंतरिक अशांति के विघात के लिए ये जो विषय की आसक्ति है ये हमेशा तैयार रहती है। यानी आपके जीवन में अशांति का अनुभव तभी होता है जब किसी विषय के प्रति आपके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए। और विषय क्या करते हैं? राग द्वेष आपके जो अनुभव हुए हैं उस विषय के साथ, उस अनुभव के आधार पर राग द्वेषात्मक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। राम जी कहते हैं कि विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। विषय जो है विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है और दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक अशांति के विघात के लिए तैयार है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। विषयासक्त व्यक्ति तत्काल मूर्ता या मूर्छित हो जाएगा विषयों के प्रभाव में। तो जब मूर्छित होगा तो वो अपने चित्त की शांति को जान नहीं पाएगा
0: जी।
1: और राम जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिसमें दोष नहीं है, वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है, वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है, और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है, बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। सोचिए ब्रह्मलोक में जो मतलब निवासी हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है वो कहते हैं कि रुद्र और विष्णु के दृष्टि में वो क्षण है वो कल्प।
0: अच्छा, तो चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बात है वो यही है, तो इसकी अवधारणा को मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें
1: जी। इसको ऐसे देखें कि ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, जिसे चिरजीवन और क्षणजीवन की जो बुद्धि है, ये दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य है। ये भी सत्य नहीं है, राम जी कह रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि चिरजीवी हैं ये, तो कहते हैं ये भी दृष्टा की बुद्धि में की कल्पना है। जो दृष्टा इस जगत को देख रहा है, जगत के दृश्यों को देख रहा है, इस कारण से वो दृष्टा है। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि की कल्पना के कारण ये चिरजीवन और क्षणजीवन की अवधारणा उत्पन्न हो रही है। जबकि ये कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है तो ये कल्पना असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उसमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, कास्ट के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेतों के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये भी एक दृष्टा की कल्पना है, इस नाते ये असत्य है। इसका भी कोई जो अवधारणा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राम जी के वैराग्य का प्रकरण है। राम जी ये कह रहे हैं कि उनके समय में भी ये बात रही होगी चिरजीवन और क्षण जीवन की, तो उन्होंने कहा ये भी मेरी दृष्टि में असत्य है, क्योंकि ये दृष्टा की कल्पना मात्र है।
0: अच्छा, श्रेष्ठ पुरुषों के पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य की गति पर भी उन्होंने चर्चा की है, तो क्या कहते हैं वो?
1: वो कहते हैं कि जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद का अर्थ स्थान, धन, वैभव आदि की जो कल्पना लोग करते हैं, को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है। क्योंकि वो चित्त के द्वारा मारा जा रहा है, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का पद चाहते हैं तो आपको उसमें राग हो गया है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ये आपके चित्त को गिरा देगा और गिरने के कारण निश्चित ही आप गर्त में गिरेंगे। जैसे पशु पक्षी हरी लताओं को खाने के लिए गिर पड़ते हैं पहाड़ों के खाई में, उसी प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के पद को पाने की चेष्टा में अपने चित्त को संसार के विषयों या उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद प्रतिष्ठा में अपने को गिरा देता है, बजाय अपने स्वरूप को जानने या अपने विवेक को जागृत करने के।
0: जी जी, तो क्षण भंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं।
1: जी,
0: मैं चाहती हूँ कि चलते चलते बहुत संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा का जो सार है वो रख दें।
1: मैं इस चर्चा का सार यही कहूंगा कि इस संसार में सावधानी पूर्वक अगर हम व्यवहार करना सीखें और संसार को सावधानी पूर्वक देखें, तो निश्चित ही इस संसार में जो तृष्णा की नदी बह रही है और जिसने संतोष रूपी धन को कह सकते हैं कि मतलब समाप्त कर रखा है, और व्यक्ति ऐसे धन की प्राप्ति के पीछे लगातार भाग रहा है जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को बढ़ा रही है। क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करके चित्त की परिपूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपके पास सात्विक बल हो। सात्विक बल में क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके पास अगर शक्ति आती है तो इस शक्ति से आप अपने आसपास के वातावरण को पोषित करें, क्योंकि सात्विक बल पोषण का काम करता है और ये बल विष्णु जी के पास है। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने के देवता हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं, तो ऐसे में पालन का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है। तो जब पालन वाला बल आपके अंदर आएगा तो उस बल से आप लक्ष्मी के साथ परिपूर्णता की अनुभूति करेंगे, अन्यथा लक्ष्मी के पीछे भागते हुए तो सारे लोग दिखाई देंगे और कभी भी वो यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, उसमें संतोष नहीं आना है, क्योंकि संतोष सुख की प्राप्ति सात्विक बल से ही हो सकती है।
0: बहुत अच्छी चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता के विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित थे इस बातचीत के लिए योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: पहले आप सुनेंगे हवाइन गिटार वादन, कलाकार हैं सुनील पावगी। और दूसरी प्रस्तुति होगी कल्पना झोकर करके शास्त्रीय गायन की। ये प्रस्तुतियां दी गईं भारत भवन के स्थापना दिवस के मौके पर। आइए पहले सुनते हैं हवाइन गिटार वादन सुनील पावगी का।
1: एक छोटी सी धुन सुना रहा हूं जिसमें कुछ कुछ चीजें भी बीच में लगाऊंगा, आप पहचाने तो बहुत अच्छा। मिश्र पीलू में एक धुन है।

ये था आज का खास कार्यक्रम जिसमें आपने पहले सुना हवाइन गिटार वादन सुनील पावगी का और दूसरी प्रस्तुति रही कल्पना झोकरकर के शास्त्रीय गायन की। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में, जहां 29 अगस्त से 4 सितंबर तक रासलीला समारोह का आयोजन किया गया है।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रासलीला समारोह में।
1: अगली लीला में प्रवेश करेंगे जो कि शिव जी की बहुत ही सुंदर लीला है। शिव जी कैसे हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है और उसको दर्शन के लिए भगवान शिव स्वयं गोकुल पधारे हैं और कन्हैया जी के दर्शन करने में जो प्रसंग है, जो वृतांत है, वो इस लीला के माध्यम से आप लोग सभी देखेंगे, समझेंगे।

आकर के भगवान ने ब्रज मंडल में सर्वप्रथम उस भूमि को प्रणाम किया। यही पावन वो भूमि है, इसे मस्तक न

0: होता है कि यही वह भूमि है जहां पर स्वयं नारायण अवतार लेकर के आए हैं और यही मां यशोदा के भवन है। इन महलों में ही प्रभु ने अवतार लिया है। सर्वप्रथम मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं।
1: भगवान ने आकर के ब्रज में ब्रज भूमि को साष्टांग प्रणाम किया। काशी से चलकर भगवान भोलेनाथ उस रज को चूमा, अपने शीश पर चढ़ाया भगवान ने।
0: और यदि हमें अपने नाथ के दर्शन करने हैं तो सर्वप्रथम हमें माँ यशोदा को बुलाना होगा।
1: नंद भवन

0: बाबा मैं आपसे कितनी तो अलग हूँ और आपके लिए कि मैं ये अलग नहीं माँ, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा मैं आपकी काली विद्या लेके आई हूँ।
1: क्या
0: जो आपको विद्या में चाहिए, सोनो चांदी वस्त्र आभूषण, सो आप ले लो बाबा।
1: नहीं माँ, देखो हम आपके द्वारे पर भिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। जो हमारे हृदय में लालसा है, जो हमारे हृदय की इच्छा है, आप उसे समझो माँ।
2: ना चाहिए तेरो पाठ पीतांबर ना ले...

0: आपका ये हीरा मोती जवाहरात हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे गुरु की यही आज्ञा हुई है कि शंकर जाओ और माँ यशोदा के भवनों में जाकर उनके लाला का दर्शन करो।
1: कहा कि बाबा आप मेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो देखो बाबा मैं अपने लाला के दर्शन तो आपको नहीं कराऊंगी।
2: विनती करत माता यशोदा हाथ जोड़कर विनती कर रही है बाबा भोलेनाथ के, क्यों कि आपका स्वरूप ऐसा है। विनती

0: नाम सो हाथ जोड़ के बार बार यही विनती कर रही हूँ, अरे आप मेरे लाला के दर्शन करवे आए हैं, अपने रूप को तो देखो, कातर विष्णु को श्रृंगार है रहे हो है, और मेरे लाला बारो है छोटो है
1: जो चाहिए।

0: अलावा जो कछु आपको भी क्या में चाहिए, सोनो चांदी वस्त्र आभूषण लोटा सोटा तुमा कटारी वे आप मुझसे मांग लो, मैं आपको अवश्य ही भिक्षा दूं।
1: नहीं माँ, जो भी आप देना चाहती हो वह हमें कुछ नहीं चाहिए। धन की नहीं चाह ना इच्छा धरा धाम होगी, क्योंकि हम तो उदासी नित शमशान वासी हैं। अमृत की चाह नहीं क्योंकि हम बिजिया विस्पान करें, अरे अन्न के लिए घर अन्नपूर्णा दासी हैं। हम सर्व सुख के दाता व मुक्ति के विधाता, क्योंकि हम मुक्ति करें दान हम वह काशी के वासी हैं। तेरी कृपा सो कमी कछु हमारे नहीं, केवल ये अखियां लाल दर्शन की प्यासी हैं।
2: बोलो कन्हैया लाल की,
1: हमको केवल अपने लाला के दर्शन करा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए।
0: अरे बड़ो हटेलो बाबा है, मैं बने कर रही हूँ और लाला के दर्शन करा दो। बाबा आपको भिक्षा लेनी हो तो ले जाओ, मैं आपको लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा।
1: देखो माँ, हम आपकी बार बार विनती कर रहे हैं कि आप हमें अपने लाला के दर्शन करा दो।
0: नहीं कराऊंगी।
1: नहीं तो माँ सोच लो, आप हमें जानती हो हम योगी हैं, योगी राज।
0: अरे बाबा आप बोल रहे, मैं एक त्रिया हूँ, एक त्रिया हटो होए।
1: माँ देखो, हम अपनी हट पर आ गए ना तो 12 और 12 24 वर्ष तुम्हारे द्वारे पर धुनी रमा करके बैठ जाएंगे।
0: बाबा तुम 12 और 12 24 तो कहा, 24 और 24 48 वर्ष तक यहाँ धुनी रमा लो, फिर भी मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, मेरे लाला रो रहे होएगो। आप जाओ यहाँ।

0: सुयस
1: आप बार बार कह रही हो कि मेरो लाला बारो है बारो
2: बारो
1: है। अरे वो बारो नहीं है, वह तो काल हु को काल है और मेरो प्रतपाल है माँ। और आप नहीं जानो हो कि वह आपको लाला या संसार को पालन करने वारो है। आप नहीं जानो
2: मेरो लाला।
1: हाँ और आपको मुझे देख करके डर लग रहा है।
2: बिल्कुल लग रहा है।
1: परंतु माँ तुम्हारा जो लाला है ना वह नहीं डरेगो।
2: देखो आप कह रहे मेरे लाला संसार को पालन करता है, सारे संसार को स्वामी है। अरे बाबा अभी मेरे लाला मेरे घर को स्वामी नहीं भाई।
1: पांच तत्व से न्यारो है तेरो लाला, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इन सबसे अलग है तेरो लाला। तू नहीं जाने हम जाने हैं तेरे लाला को।
2: ऐसे कह के मेरे छोरा नजर लगाए हुए आए हुए।
1: अरे नजर नहीं लगेगी भैया,
2: मैं तो हाथ छोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ।
1: अरे माँ मैं आपकी धोख
2: दे रही हूँ महाराज, परंतु मैं आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। आप जाओ यहाँ से,
1: एक बार अपने लाला के दर्शन करा दो माँ और हम वापस चले जाएंगे।
2: अरे बाबा जब वही डर लग रहे हो, मेरे लाला तो छोटो है और डर जाएगो। अब जाओ यहाँ से।
0: माता यशोदा ने मना कर दिया और मैया यशोदा चली गई इधर बाबा भोलेनाथ।
1: माँ हमने तुम्हारी विनती बहुत की है, परंतु हम अपने नाथ की विनती अवश्य करेंगे। यदि उनकी इच्छा होगी तो वो हमें दर्शन अवश्य ही देंगे, और यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम वापस चले जाएंगे। आपने देखा कि हमने आपकी माँ की कितनी विनती की, परंतु उन्होंने हमें आपका दर्शन नहीं कराया। आपसे भी हमारी विनती है, यदि आपकी इच्छा हो, क्योंकि हम आपके दर्शन के लिए काशी से चलकर के यहाँ आए हुए हैं, तो एक बार अपना दर्शन हमें अवश्य ही करा दो।
0: भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी ताली बजाते हुए गाएं।

0: बहुत प्रयास किया दर्शन के लिए, और इधर माता जसोदा ने देखा कि संत परेशान हैं, तो बाल कृष्ण को लाई जसोदा, कर अंचल पट छाया।
1: अरे बाबा,
0: महलों में ले गई।
1: आओ,
0: और ठाकुर
1: परेशान मत हो, आओ मैं आपको अपने लाला के दर्शन कराऊं।
2: क्यों नहीं माँ?
1: क्योंकि जब भी आप गए मेरे लाला रो रहे हो।
2: क्यों नहीं, दर्शन कराऊं माँ, आओ।
3: ये थी रेडियो रिपोर्ट रासलीला समारोह के दूसरे दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले रविंद्र भवन। संस्कृति विभाग द्वारा श्री कृष्ण पर्व के अंतर्गत रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर आयोजित 7 दिवसीय रासलीला समारोह के तीसरे दिन सोमवार को बाल लीला और उखल बंधन के मार्मिक प्रसंगों का जीवंत मंचन किया गया। माधव आचार्य के निर्देशन में ब्रज से आए कलाकारों ने माखन चोरी और माता यशोदा द्वारा भगवान को उखल से बांधने के दृश्य प्रस्तुत कर दर्शकों को भक्ति और आनंद से सराबोर कर दिया। लीला के उपरांत मशहूर भजन गायक कुमार विशु के भक्ति गायन ने समा बांध दिया। उन्होंने कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जैसे प्रसिद्ध भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर पूरा परिसर जयकारों और तालियों से गूंज उठा। आज यानी चौथे दिन मंगलवार को राधा कृष्ण प्रथम मिलन और कालिया मर्दन प्रसंग का प्रदर्शन किया जाएगा। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन होगा। राजधानी सहित प्रदेश की 29 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, नारायणा धाम, धार का अमझेरा, महू का जाना पाव और रायसेन का जामगढ़ जैसे प्रमुख पौराणिक स्थल इसमें शामिल है। देश भर के कलाकार इसमें शामिल होंगे। ये भजन, शास्त्रीय नृत्य और नृत्य नाटिकाओं के जरिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गीता उपदेश और सुदामा मित्रता के प्रसंगों को जीवंत करेंगे। आयोजन 2 से 6 सितंबर तक चलेगा।

पार्श्व गायक किशोर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के सदाबहार गीतों से राजधानी की शाम सजेगी रविंद्र भवन में 5 सितंबर को 24 कलाकार गीतों की प्रस्तुति देंगे। गीत गुंजन कार्यक्रम में नवोदित और पेशेवर कलाकार को मौका दिया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या में कलाकार प्रभाकांत कटारे, राकेश तिवारी, अजय कुमार अग्रवाल और सुभाष भावनानी गायक प्रस्तुतियाँ देंगे।

कला प्रेमियों के लिए अलायंस फ्रांसिस डी प्रकाश चित्र प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा है। द लेजेसी ऑफ लाइट 200 ईयर्स ऑफ फोटोग्राफी शीर्षक से 1 सितंबर से इसका आयोजन हो चुका है। यहाँ प्रदर्शनी फोटोग्राफी के 200 वर्षों के शानदार इतिहास और विकास का उत्सव मनाती है। इसमें मध्य प्रदेश के 7 प्रमुख फोटोग्राफरों की उत्कृष्ट कृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों को मध्य प्रदेश के परिदृश्यों, ऐतिहासिक वास्तुकला, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आम जनजीवन के विविध रूपों को तस्वीरों के जरिए देखने का अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ साहित्यिक संस्था भोजपाल साहित्य संस्थान की मासिक गोष्ठी का सोमवार को आयोजन हुआ। गोष्ठी में रचनाकारों ने विविध विधाओं की रचनाओं में समकालीन जीवन, तकनीकी युग की विसंगतियों और मानवीय दृष्टिकोण को प्रखरता से रेखांकित किया। जितेंद्र श्रीवास्तव ने पानी और प्रियदर्शी खैरा ने प्रकृति का प्रतिशोध कविता के जरिए पर्यावरणीय चेतना जगाई। वहीं श्रीवास्तव की कॉकरोचों की दुनिया, चरणजीत कुकरेजा की उल्टी सीमा सीधा रास्ता, अशोक व्यास की रुदन का सफल टोटका, संतोष श्रीवास्तव की साइबर बेवफा और सुदर्शन कुमार सोनी की लैंडलाइन की आत्मकथा जैसी व्यंग्य रचनाओं ने बदलते समाज पर तीखा प्रहार किया। गोकुल सोनी ने चौर्य कला की चौतरफा चर्चा और विकास प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। रचना पाठ के बाद सारगर्भित साहित्यिक विमर्श भी हुआ।

और श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ। अब हम आपको जानकारी देते हैं मौसम की। सितंबर की शुरुआत में भोपाल समेत मध्य प्रदेश में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना नया कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से भोपाल में 3 और 4 सितंबर को तेज बारिश की चेतावनी है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 3 से 5 सितंबर के बीच कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को सितंबर का पूर्वानुमान भी जारी किया है। इसके मुताबिक इस महीने बारिश का सबसे ज्यादा जोर पूर्वी मध्य प्रदेश में रहेगा। यहां सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके उलट मालवा के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 से 6 सितंबर के बीच बारिश का दायरा बढ़ेगा। मौसम की इस जानकारी के साथ ही कार्यक्रम परिक्रमा अब यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन 7 बजे सुबह से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी दोपहर कालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया ना जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: .8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दो प्रस्तुतियां। पहले रागिनी गायन राजेश दलाल और उनके साथियों के स्वरों में, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे आल्हा गायन। पहले रागिनी गायन।
3: बहुत ही आदर और सम्माननीय सबको हमारा प्रणाम है, राम राम है। तो रागिनी गायन। जिंदा रहने का हुनर उसने सिखाया होगा, जिंदा रहने का हुनर उसने सिखाया होगा, तेज आंधी में दिया जिसने जलाया होगा। तो मील का पत्थर बनगी प्यारे, मील का पत्थर बनगी प्यारे, इसकी आत्मनिर्भरता गिने देना मैं यू हरियाणा, होता जावे क्या से क्या, और देख पड़ोसी कहने लागे वाह भाई वाह वाह वाह वाह, ओ बल्ले ओ मेरे यारा से मारा हरियाणा, सारी दुनिया ते न्यारा से मारा हरियाणा, यू किसा से मारा हरियाणा। सुनिए इस रागनी में।

और सब ते अच्छी साची बात ये सब ते अच्छी साची बात महकार से मारे पसीने में भागण सा खेला खेता में

बॉर्डर के ऑर्डर हो कर गिलिया बॉर्डर के ऑर्डर जवान तने हरियाणे के खेला में मेडल ल्यावे ना जावे गिने हरियाणे के पढ़े लिखे ये सखर चढ़े से बने जने हरियाणे के और बॉलीवुड में चले जठोरे देख अपने हरियाणे के।

हमारी रिवाज है कि बच्चा होता है तब उसकी छठी मनाई जाती है, और उसके पीछे एक ये मान्यता है कि उस दिन वो बेमाता उसके भाग, उसके लेख, उसका भविष्य लिखने के लिए आती है। कहते हैं कि वह बेमाता आई और पूछने लगी उसकी माँ से, अब बता तेरी संतान के भाग्य में क्या लिख दूं। माता हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोले जी आप कौन? बोला मैं बेमाता हूं। बोले हाँ, फिर तो आप जो लिखोगे वो पार जागा। हाँ, बोला बोल मां क्या लिख दूं। बोला जी ये लिख दो, अग मेरी औलाद लेके दे देर करके खा ले, लेके दे दे और करके खा ले, उस पे कौन जबर होश है। हमारे हरियाणा का एक मुहारा है बहुत जिंदा, लेके दे दे करके खा ले, उस पे कौन जबर होश है, और नुगरा मानस आंख बदल जाता समझदार की उम्र होश है। सबसे बड़ा मान सम्मान हमारे इस बात में है कि हम कर्मठ हैं, अपना पसीना निचोड़ के अपनी जमीन को सींचते हैं, अपना किया हुआ खाते हैं, बेराना के नन नहीं लखा, दूसरे के लोभ नहीं तकते, दूसरे की धन माया पर लाल टपकाना हरियाणा का कर्म धर्म नहीं है। आखिर में क्या बताया, कितनी मेहनत से आया है ये शिखर में हरियाणा, सुनिए।

पैदा करके खाला ये भाग लिखाए से हमने, खूब कमाए गाठ खपाए फर्ज भुगाए से हमने, और गोरे राज के ताज उछाड़े पढ़ने बैठाए से हमने, गोरे राज के ताज उछाड़े इतिहास बनाए से हमने, और गुड़ की डड़ी खा गढ़वे बजा के उधार का स्वर्ग नहीं सजाया हमने, जो हमारा घरा था उस समय मस्त रहे। अरे गुड़ की डड़ी खा गढ़वे बजा के त्योहार मनाए से हमने, राजेश दलाल तू रहे आपे में राजेश दलाल।

एक और प्रस्तुति का मेरे लिए। दोस्तों कहते हैं कि जहां जहां शहीदों की रूह उकेरी जाती है, जहां जहां शहीदों की रूह उकेरी जाएगी वहां वहां बिना अगरबत्ती भी महक आएगी। तो शहीदों के शहीद शहीद आजम भगत सिंह की रूह उकेरने का एक किस्सा, एक वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि 24 तारीख 1931 उनकी फांसी का दिन धरा, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतना हड़बड़ा गया कि एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को वे तीनों सुखदेव भगत सिंह राजगुरु फांसी पे चढ़ा दिए। और केवल चढ़ाई नहीं, बिल्कुल निर्मम हत्या भी की उनकी, इतिहास बताता है। और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए, जो उनके साथी बाहर थे वो नदियों के मां गला दिए। लकड़ी की जगह पर कोला था, मिट्टी के तेल में घोला था, जो अगर तगर भी बोला था वो मित्र प्यारे जला दिए। और सतलुज नदी के किनारे पर जब वो जलाए तो ये दुखदाई नजारा देख के कुदरत भी आंसू गिरने लगी और वृक्ष भी अपने पत्ते झड़काने लगे दुख में। सब फूल पाथे झड़ रहे, झड़ झड़ कीचड़ में पड़ रहे, हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे, वे बादाम छुहारे जला दिए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। ये कवि ने कल्पना की 23 तारीख शाम को उनको फांसी हुई, किस निर्ममता से फांसी नहीं काटा गया। और फिर अखबारों में छपती है ये खबर, 25 मार्च 1931 को सुबह सुबह एक अखबार वाला अखबार बेचक गलियां में रूप के मारे सुबह सुबह। अखबार बेचने से ज्यादा उसके दिल में ये संताप था कि भारत के 3 लाल मार दिए। रो रो कर अखबार बांटे गलियों में, उसकी एक आंख से आंसू थम नहीं रहा था और गुस्से में एक आंख से आंसू निकल नहीं रहा था। वो क्या कहता है, रुक के मार मार के उसका अखबार बेचना, उसका संताप अखबार बेचने के अपने लालच से 100 कोस दूर था। वो क्या कहता गलियों में फिर रहा है, सुनिए एक रचना आपके सामने शहीदों के खून से रंगी हुई, सुनिए।

सतगुरु सुखदेव भगत सिंह ए हिंद के ए दुलारे बिनू और रस्से से गल घोट दिए जो शेर से ललकारे तीनों रस्से से करे कसाइया में और बोटे करे कसाइया में वे तो काटी।

ना बेटा अंग्रेज कानून के पक्के हैं, तड़के ही तोड़े, गरीब ना तोड़े। बोला ना ना ना, देख गाड़ी जाती भी देखी है, क्या नजर है अगली बार।

टुकड़े कर दिए टुकड़े कर दिए बोरे भर दिए लथ पथ मास पासली हाडी मल मूत्र जा हजी सर रस्ते से उसे गेट ते काटी काटी कैदी चंगाड़े और हो गे खाड़े बाहर भी हो कार ठाटी कैदी चंगाड़े

रामपुर हुसैनी वाला गटमट गेरे मूल्यवान, अरे आओ लाली मेरी गोदी में।

0: आधे दला है आधे के बगाए अंधेर को काए मोर से
1: खबर है ये तो आई है लाहौर से सुन लो जोर से पढ़ लो जोर से।

कर दिए बोरे, भर दिए लथपथ मांस पासली हड्डी, मल मूत्र जा जिस रास्ते से उसे गेट पे गाड़ी गाड़ी, कैदी चंगाड़े हो गए रखाड़े, बाहर भी होकार ठाडी, फिर सरकारी गुर्गे वे डर गए, रम मर गए, चलो बचा लो जान, जा फिरोजपुर हुसैनी वाला गढ़ मट गेरे मूल्यवान, रे आओ लाल मेरी गोदी में, वह सतलुज रोई बे अनुमान, सतलुज में गेर के वे आधे भून भान के, वे आधे जलाए आधे बगाए, अंधेर को काए मोर से, सुन लो जी गौर से, पढ़ लो जी गौर से, गाड़ी गई उधर से वो कार्रवाई रच दी उन जालिमों ने, तो भगत सिंह की बहन अमर कौर और उनके साथी जयदेव गुप्ता, गाड़ी जाली है कुछ हो लिया है, जिसका जो साधन था उधर गाड़ी का पीछा करने के लिए भाग लिए अंधेरे में, और वो मांस के टुकड़े किते किते पाए गाड़ी वाले तो भाज गए कर कर आ गए, और वो खून की मिट्टी जहां पाई वही विरासत समझ के अपने सीने से लगा ली, और फिर अपने ढंग से उनका अंतिम संस्कार करने के लिए रावी तट पे चल पड़ता है काफिला।

गुप्ता पेड़ा पेड़ा जा लिए फेर मसाल लाल टन है टोरच ले ले झुंड के झुंड आ लिए फेर गर्म लोथ देर खून की मिट्टी

है रूजी भी इस चक्कर खा गे ए देख के मारा ए दुख की आंधी दिल्ली के स्टेशन पे ए सुबह के रोवे मालवीय गांधी दिल्ली के आदत की पर ले छिड़गी हो फिर सा आदत की पर ले छिड़गी बदले बूढ़े के

पांच कर लिया है, क्या होया? फिर उनकी शहादत की परले छिड़ गई, हिंदुस्तान में इतनी उथल पुथल माच गई, वे मार दिए रहे, तीनों जने मार दिए रहे हिंद के लाल। तो गांधी, नेहरू और मालवीय जी दिल्ली के स्टेशन पर थे, उनमें खबर पहुंची तो वे भी सदमा खा गए। और भगत सिंह के गांव बंगा से खून से लिखी चिट्ठी आई, अपने लाल का एंडी बदला लेकर दिखावांगे पूरे हिंदुस्तान में, इसके विरोध में क्या क्या हलचल होने लगी, के तूफान माचा। सुनिए, धरती अम

कलकत्ता, कराची, बम्बई और दिल्ली, जंग मदरास में, रावल पिंडी बोली ना रहूं।

याद करे जा रहे हैं लास्ट कली जी बस वेत अर्पित सबरी समर्पित करके अरे अर्पित सबरी समर्पित करके सच्चे संत पा

मारे नेता है जगागे क्या सीखना उनसे अरे भगत सिंह से सीखना है के अरे भगत सिंह से सीखना है के भगत बनेंगे सी बनेंगे राज का गुरु वो कहाँ छिपा है ढूंढेंगे और चाल गिनेंगे सुख देवन कोई देव ना आवे और अपने मोर्चे आप तनेंगे सुख देवन कोई देव ना आवे अपने मोर्चे आप तने राजेश दलाल तू काई सधार हो राजेश दलाल तू काई सधार के अल्लाह बोल जा जोर से सोने लो जी जोर से पढ़ लो जी जोर से।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं आल्हा का।

क्या विचार किया कि उदल को मरवा के राजा परमाल का खजाना लुटवा करके चैन लूंगा। यही विचार करके माहिल प्रस्थान कर देते हैं महोबा की ओर और जब महोबा पहुंचे तब राजा परमाल से कहते हैं, महाराज सुनो, नीके घोड़ा नाम

जवाब दिया और कहा, तुम्हारी मति मारी गई है, मैं रंग महल को प्रस्थान नहीं करूंगी। जवाब दिया वो दल ने मालिन से, कहा कि सुनो, हार गूंथ

आभास लेने के लिए मालन वहां से प्रस्थान कर देती है और इधर उदल क्या कर रहे हैं, रानी फुलवा के लिए हार गूथ रहे हैं, कैसे हार

0: भौजी सुनो, हार गूथी डलिया माँ धर दिया, तुम फुलवा कर दियो पहिराए, लेके डलिया मालिन चली भेज मबना राख्यो देर
1: लगाए।
0: और जब महल में पहुंची फुलवा को हार पिन्हाया, तब क्या हुआ सजनो, ध्यान दीजिएगा।

0: सज्जनों, आज उदल ने जवाब दिया फुलवा से, कहा कि सुनो धीरज रखो, हमारे यहाँ महोबा में राजा परमाल है, चंद्रावली बेटी राजा के हर बैठे संग हुआ पर जाए, ऊंच नीच का हम ना जाने, तुम का साच रहिन बतलाए। आज उदल जो महोबा का योद्धा है, रानी फुलवा से मिलने के लिए अपनी नाक तक छिदवा डाली। और उधर सज्जनों, जब एक बार किसी से गलती हो जाती है तब दोबारा सुधार हो जाता है। तभी तो कहते हैं इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही मंदिरों में पूजा करने नहीं जाते, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है।
1: क्या बात है।
0: आज की शाम आपको बहुत सारे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। सुनिए आला गायन में क्या होता है। सज्जनों, कहा गया सितारों की महफिल को महफूज रखना, बड़ी दूर तक है बड़ी रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। लेकिन तब तक के लिए आला सुनेगा होता क्या है। आज उदल ने जवाब दिया रानी फुलवा से, कहा सुनो हम महाराजा की बेटी के साथ में बैठे हैं, हमें ऊंच नीच का मालूम नहीं है। उदल की ये बातें सुन करके रानी फुलवा ने जवाब दिया और कहा कि सुनो चिया रे कर रे हाथ तुम्हारे लागे, इतना हमका दियो बताए, उदल वाले वही बेरियामा फुलवा सुन लियो कान
1: लगाए,
0: कि रखीन नौकरी जाए दूसरे के तुम का साफर है बदलाए, हमारी जो तुम मानो तुम ते साच रहिन बदलाए, या ऐसी अबानी फलवा वाले माल ने ध्यान बिसरी ना जाए, या आज के रहनी यहाँ पर।

0: क्या हुआ? जवाब दिया वो दल ने और फलवा से कहा कि सुनो, नाम हमारा बघबूदल है, अरे तुम का साँच रहन बतलाए, और नगर महोबा गाँव हमारा, हम हैं देश राज के
1: लाल,
0: तुम्हार से मिलने के लिए हमने नारी का भेष बना लिया। उदल का नाम जैसे फुलवा ने सुना, सज्जनों उस समय जानते हो फुलवा ने क्या किया? जोरी गदुरिया फुलवा बोले, हरे बालम सुनो उदय चंद्राए, अब भले हे आए गो तुम नरवली माँ, हम ते लीजे ब्याहू
1: कराए।
0: जवाब दिया उदल ने और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तुमसे विवाह रचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। जवाब दिया फुलवा ने उदल से कहा कि सुनो, यद तुम विवाह रचाने के लिए नहीं आए हो तो मुझसे वादा करो, यहाँ पर क्यों आए हो? जवाब दिया उदल ने, तुम का द्याखन का आयन रहे, सुन लियो बात हमारी आए, हजोरी गदरिया बोले फुलवा, हम संग भमरी लियो
1: डराए।
0: तब जवाब में उदल कहते हैं फुलवा से,

पहुंचे नरवल गणम्मा भारी तो पदियो तगवाए या खबर लागी कह नरपति सिंह का या पने फौज दिया तैयार या पढ़ के चाप दिया नरपति ने वो महोबा के वीर जवान या कह की मैया ने बर पूजा कही दे पिता रहे ये दवा या कह की दे ही है बजर

0: जवाब दिया उदल ने और राजा नरपत सिंह ने कहा कि सुनो, क्या हम तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे? जो रणभूमि के क्षेत्र में मुझे धमकाने के लिए आ गए, डोला दई दो निज बिटिया का, नहीं अनमंत जोग हो जाए। ईट न रही है नरवल गढ़ मा, और नरवल खोदी करा दूं
1: ताले।
0: ऐसी अबानी में राजा हवाले, सुन लो बात बना फरराए, और डोला दिया बैना बिटिया का, चाहे कोटिन करो
1: उपाय।
0: जवाब दिया उदल ने और कहा कि सुनो, वो जिंदगी भी क्या जो दमदार नहीं होती, वो जिंदगी भी क्या जो दमदार नहीं होती, वो तलवार भी क्या जिसमें धार नहीं होती। जमाना लाख बने रुकावट, हिम्मत भरे लोगों की कभी
1: हार नहीं होती।
0: तुम्हारी बेटी का डोला तो हम लेके रहेंगे। खीर बातन बातन पतगड़।

लागै जे घोड़ा के चार सौ मगध हो जाए, या गला जंजरी हाजिन के लागै उनके भी खंडा हो जाए। चार पंक्तियां पढ़ रही हूँ।

होई जाए या ऐसी बानिया राज हवाले मान होवे दिल के सवार या ललका दिया खाना महबे माना फलदान चढ़ावा जाए या जतने या जो महबे वाले सबके मोड़ लिया कटवाए या वाग लाग गए तो वो दिल

क्या मुस्लिम मर जरण ख्यातन मापा की कबर बिहार बनवाए या हिंदू मुसलमान कोई हो वह अपन कर तब दिए दिखाए या झुके खलासी दोनों।

या नरवली वाले हजीने कहे बेड़ी बहाए तलवार और हालु बता दे महुबे वारने हजीने कहे गति बरनी ना। किस तरह नरवल गढ़ के मैदान में युद्ध हो रहा है सज्जनों ध्यान दीजिएगा।

नरपत सिंह अपने हाथी से रणक्षेत्र के मैदान में नीचे गिर गए। और उस समय क्या हुआ, उदल ने महाराजा से कहा कि सुनो, तुम क्या समझते हो कि हम डर जाएंगे, ऐसी कठिन घड़ी से मुकर जाएंगे, ये रणभूमि है, तलवार रोक रुक देखो, दुश्मन का सीना चीर कर सीने पे उतर जाएंगे। आज राजा नरपत सिंह का दिमाग खराब हो गया, बोल न फूटा मुख से आको, उदल दीना हाथ उठाए, दंड बंधाया नरपत सिंह ने, उदल बै ने कहा समझाए, उदल ने नरपत सिंह के दंड बंधवा लिए। और उस समय उदल ने नरपत सिंह से कहा मारा सुनो कि अरे हारी लिख दो जब ही ना पाए जब ना राखो देर लगाए, हारी लिख

नल्ला के चढ़वैया बहु हर विदान लिहो करवाए या कागज पर न हम होबे मा महलन हो मंगला जा या जय लड़ाई नरवा।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने रागिनी गायन और आल्हा गायन सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।

0: दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बारट लॉ के यहां नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बागीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेकों को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं, तुम्हारे यहां निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का काल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वो लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थीं। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सुफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्टों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सुफेदे स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक ना समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाने के बाद उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं है। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटकते देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे, डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रवीशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थीं। उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सुफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहां एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गए और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सुफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इसमें एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए, फलों का डंठल है। यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे। उनके यूं लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। ये कहकर वे नैराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। ये जाति ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद ना करें। ये सुफेदे ना सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं। सुफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन बोले,
1: भाई यहां भी वही हाल है, जो इस समय फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका क्या अफसोस।
0: डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांधकर घर ले जाइए। वे हैं और किस लिए, पर वो रस और स्वाद कहां। आपको विश्वास ना होगा, उन सफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वो रुचिवर्धक लालित्य, वो सुधा में मृदुता कहां। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं, इस वक्त सामने आ जाए तो अधमरा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइस से कुछ आम तुड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा, वो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। ज्यों ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए, समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे, मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा। सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा, कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले ले, और इस तरह मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है, एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता था, किंतु जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसके बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी, अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं, लेकिन वकील थे, विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सुफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी दिखाई नहीं देता, कहां चले गए। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर मैं अभी बाजार गया हूं, तब तक तो सब आम लगे थे, इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारा संदेह किस पर है। सरकार अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नीयत बिगड़ गई हो। मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है, अगर तोड़कर रखे हूं तो लाकर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वो अपमान से भी बचना चाहता है। वो दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वो अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर आप मालिक हैं, जो चाहे करें, पर मैंने आम नहीं तोड़े, सरकार ही बताएं, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए, मैंने एक पत्ती भी छुई है। तुम कसम खा सकते हो, गंगा की कसम जो मैंने आमों को हाथ से छुआ हो, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हूं तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास आएगा। हुजूर सांच को आंच क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा, जब मैंने काम किया ही नहीं तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। अच्छा बातें ना बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वो अपने झोंपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई, उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा की कसम ना उठाऊंगा, यही ना होगा निकाल दिया जाऊंगा, नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी ना मिले तो मजूरी तो कहीं गई नहीं, कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आधा सेर आटे का ठिकाना हो जाएगा। वो धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर में पूछा, पानी लाया। हुजूर मैं गंगा ना उठाऊंगा। तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है,
1: अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैं नहीं आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं। रात दिन ताबेदारी करता हूं, बाल बच्चे आम के लिए रोवें तो कहां जाऊं। आपकी जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर ना होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे, उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और ना ही हंटर लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना संभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई माह के पश्चात मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल और सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे। वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपने आजीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वो दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई। यदि दुर्गा इस समय फटे हाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेमशंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से भी थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा। प्रेमशंकर ज्यों ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, क्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, ये आदमी आपके यहां कितने दिनों से है। यही 6 या 7 महीने हुए होंगे। कुछ नोच खसोट तो नहीं करता। ये मेरे यहां माली था, इसके हथलपकेपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेच आता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता और फलों का तो कहना ही क्या। वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने ले गया तो सारे फल गायब। हजी कुछ ना पूछिए, उस समय उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई। बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर, इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया। अज्जी नहीं, कभी नहीं, मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बागीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वो शाम को मुझे दे देता है और कभी पाई का अंतर नहीं पड़ता। यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुड़े और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? यहां किसी को वेतन नहीं दिया जाता, सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपये प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है। शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपए की आमदनी हुई थी। मुझे मिलाकर 7 आदमी हैं, 20 रुपए हिस्से पड़े। अब की नारंगियां खूब हुई हैं, मटर की फलियों, गन्ने, गोभी आदि सच्ची आमदनी हो रही है। 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूं, इन्हीं का सा खाना खाता हूं और मुझे कोई दूसरा व्यसन है नहीं।
0: यहां 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है, जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूं, जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं। सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहां कोई मालिक होता है और दूसरा कोई नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए, नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं आता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकती है। अच्छा, तो ये कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं। जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता, जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वो शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य है, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति को शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया। वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धन लिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1,000 से कम वेतन पाए तो उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2,000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए, मेरी फीस में बाधा ना पड़े। और हमारे वकील साहब, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य में हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति का भक्त बनने का दावा है। वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल स्वार्थी ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजूरी करें? जी नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे जो आपत्ति है ये केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगुनी तिगुनी आय काफी होनी चाहिए, और वो अधिकता इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5,000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर का भी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी है, पर इनमें से एक भी धनोपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त

0: सुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए, परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है और वकील साहब या डॉक्टर को 5,000 भी काफी नहीं। डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे, जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वो वकालत करे। मेरा कथन ये है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और अनिवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अनगिनत लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार रूप हो रही हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि इन दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है। डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का ही रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए उस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर जी ने फिर जवाब दिया, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व बना हुआ है वकील साहब। पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य, रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है, किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुत्व के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वो साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मन प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर ना हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजाकर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है। वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गए और बोला, हुजूर को कैसी कलम चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिखकर दे दीजिए, मैं कल आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ, लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहां अच्छी तरह हो? जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम में हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र अभी तक ऐसे किसी प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
1: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
3: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
1: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
3: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
1: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
3: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
1: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
3: बिल्कुल,
1: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
3: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
1: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
1: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
3: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
1: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
3: बिल्कुल।
1: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
3: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
1: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
3: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
3: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
1: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
1: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
3: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
1: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
3: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
1: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
3: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और ये उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
3: बिल्कुल,
1: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
1: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
3: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
1: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
3: बिल्कुल,
1: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
3: कौन सी कविता?
1: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
3: वाह,
1: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
3: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
1: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
3: बिल्कुल,
1: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
3: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
1: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
3: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे, खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
1: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
3: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है, लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे। सो भारतेंदु ने न केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
1: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
3: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
1: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
3: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
1: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
3: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
1: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
3: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी

0: देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
1: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
1: बिल्कुल ठीक,
0: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
0: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
1: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
0: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
1: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
0: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
1: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
0: जी।
1: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
0: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
1: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
0: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
1: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
0: बिल्कुल।
1: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
0: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
1: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
1: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
0: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
0: अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: नवे 98 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन।
3: नमस्कार। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आदि शंकराचार्य रचित गंगा स्तोत्रम से। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे।

0: अब इसके बाद राग भोपाली में संक्षिप्त आलाप और एक प्रकृति की रचना है, प्रकृति की पूजा है।
1: एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि भोपाली भू को पालने वाली,

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, अमेजॉन पॉडकास्ट और साथ ही यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: वेद, पुराण, आख्यान ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर हैं, और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 10वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता है अग्नि और छंद है त्रिष्टुप।
1: जो हुत्रो अग्निः प्रथमः पिते वेदस्पदे मनुषा यत् समिद्धः श्रियं वसानो अमृतो विचेता ममृजेन्यः श्रवस्यः स वाजी। जो अग्निदेव यज्ञ स्थल में मनुष्य द्वारा प्रज्वलित होते हैं वह पिता के समान पालक प्रमुख तथा पूज्य होते हैं। वे अग्निदेव शोभायुक्त अमर विविध ज्ञानों से युक्त अन्नवान बलशाली तथा सभी पदार्थों को पवित्र बनाने वाले हैं, इसलिए वह सबके द्वारा पूज्य भी हैं। श्रूया अग्निश्चित्र भानुर्हवम् मे विश्वाभिर् गीर्भिरमृतो विचेताः श्यावारथं वहतो रोहिता वोतारुषाः चक्रे विभ्रतः। अमर विशेष ज्ञान से युक्त अद्भुत कांतिमान अग्निदेव हमारी सभी प्रकार की वाणियों से की गई प्रार्थना को स्वीकारें। अग्निदेव के रथ को श्याम वर्ण वाले, लाल वर्ण वाले तथा शुक्ल वर्ण वाले घोड़े खींचते हैं। वे अग्निदेव विविध स्थानों में भ्रमण करते हैं। उत्तानाया मजनस्यन्तु सुषूतम् भुवदग्निः पुरुपेशासु गर्भः शिरिणायां चिदक्तुना महोभिरपरिवृतो वसति प्रचेताः। नाना प्रकार की औषधियों काष्ठ में अग्निदेव गुप्त रूप से विद्यमान होते हैं। उनको मंथन द्वारा अध्वर्युगण उत्पन्न करते हैं। ये रात्रि में अपने तेज के कारण अंधकार से आच्छादित न होकर सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। जिघर्म्यग्निम् हविषा घृतेन प्रतिक्षियन्तम् भुवनानि विश्वा पृथुम् तिरश्चा वयसा बृहन्तम् व्यचिष्ठमन्नै रभसम् दृशानम्। संपूर्ण भुवनों में संव्याप्त महान तेजस्वी काष्ठ आदि पदार्थों से खूब फैलने वाले तिरछी ज्वालाओं से युक्त सुंदर दर्शनीय अग्निदेव को हम घृत और चरु से सिंचित करके प्रदीप्त करते हैं। आविश्वतः प्रत्यंचम जिघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जुषेत मर्यश्रीः स्पृहद्वर्णो अग्निर्नाभिमृषे तन्वा जर्भुराणः। सर्वत्र व्याप्त अग्निदेव को हम घृत से सिंचित करके प्रदीप्त करते हैं। हे अग्निदेव, समर्पित घृत की आहुतियों को शांतिपूर्वक ग्रहण करें। मनुष्यों द्वारा पूज्य कांतिवान अग्निदेव जब तेजस्वी रूप में प्रदीप्त होते हैं तब कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ज्ञेया भागम सहसानो वरेण त्वादूतासो मनुवद वदेम अनूनमग्निम जुहवा वचस्या मधुप्रचम धनसा जोहवीमि। हे अग्निदेव, आप अपनी शत्रु निवारक शक्ति से विजय प्राप्त करते हुए हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। हम आपकी मनु की तरह दूत रूप में स्तुति करते हैं। मधुरता युक्त धनदाता अग्निदेव को हम स्तुति पूर्वक घृत की आहुतियां प्रदान करते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 10वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के एक छात्र ने अपने प्राध्यापक के कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, मे आई कम इन सर। इतना कहते ही दरवाजा खुला। एक अत्यंत शांत, सौम्य और साधु पुरुष गर्दन पर भागलपुरी सिल्क की चादर लपेटे सामने खड़ा था। उन्होंने धीरे से गंभीर स्वर में कहा, अभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए आपने किस भाषा का व्यवहार किया? क्या आपकी कोई बोली या भाषा नहीं है? आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, फिर भी विदेशी आंग्ल भाषा का व्यवहार हिंदी के एक प्राध्यापक के पास आकर क्यों कर रहे हैं? छात्र अवाक खड़ा रहा। प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी उन्होंने। पूछा, आपकी मातृभाषा क्या है? छात्र ने उत्तर दिया, सर मैथिली। जवाब सुनकर उन्होंने कहा, आइंदा जब आप मेरे पास आएं, तो मैथिली या हिंदी में ही बात करेंगे, अंग्रेजी में कदापि नहीं। अपनी मातृभाषा को सम्मान देने की सीख देने वाला ये प्राध्यापक कोई भारतीय नहीं था, बल्कि ये थे बेल्जियम से भारत आए मिशनरी फादर कामिल बुल्के। इनका जन्म सन 1909 में बेल्जियम के रैम्स चैपल नामक गांव में हुआ था। बचपन अभाव और संघर्ष से भरा था और पढ़ाई कई स्थानों पर जारी रही। यद्यपि 1930 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण अध्यात्म की पुकार से प्रेरित होकर अपने माता पिता से संन्यास की अनुमति ली और सन 1930 में ही वे जेस्विट बन गए। सन 1932 में उन्होंने रोम से दर्शन शास्त्र में एमए किया और सन 1934-35 में मिशनरी कार्यों के लिए भारत आए। भारत में काम करना उन्हें इतना प्रेरणादायक लगा कि वे फिर भारत में ही बस गए। शुरुआती दौर में उन्होंने दार्जिलिंग के एक स्कूल में गणित पढ़ाते हुए खड़ी बोली, ब्रज और अवधि सीखी। उन्होंने सन 1938 में सीतागढ़ हजारीबाग में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत सीखी। सन 1940 में उन्होंने प्रयाग से विशारद की परीक्षा पास की और फिर 1942-44 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। भारतीय संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि के चलते फादर कामिल बुल्के ने रामकथा पर डीफिल किया। बाद में गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का गहन अध्ययन कर उन्होंने सन 1950 में रामकथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की। इस शोध संकलन में उन्होंने बताया कि राम वाल्मीकि के कल्पित पात्र नहीं, वे इतिहास पुरुष थे। तिथियों में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, लेकिन इस शोध ग्रंथ में उन्होंने बताया कि रामकथा केवल भारत में ही नहीं बल्कि वियतनाम और इंडोनेशिया तक फैली हुई अंतर्राष्ट्रीय कथा है।

1950 में ही फादर कामिल बुल्के बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की कार्यकारिणी सभा के सदस्य नियुक्त किए गए। 1972 से 77 तक वे भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर कामिल बुल्के लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, फ्लेमिश, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत जैसी विश्व की कई भाषाओं के ज्ञाता थे। गहन शोध, अध्ययन और मीमांसा उनकी विशेषता थी, लेकिन हिंदी के प्रति उनका अनुराग अद्भुत था। डॉक्टर कामिल बुल्के लंबे समय तक रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में संस्कृत तथा हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। अपने समय के हिंदी भाषा के सभी चोटी के विद्वानों से उनका संपर्क था। डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामस्वरूप, डॉक्टर रघुवंश, महादेवी वर्मा आदि से उनका विचार विमर्श और संवाद लगातार होता रहता था। महादेवी वर्मा को वे दीदी कहते और इलाहाबाद के लोगों को मायके वाले। डॉक्टर कामिल बुल्के इलाहाबाद के अपने प्रवास को अपने जीवन का द्वितीय वसंत कहते थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उनके प्रेरणा स्रोत थे, जिनके कहने से ही उन्होंने रामकथा पर अपना शोध ग्रंथ लिखा। अपने अध्ययन पूर्ण इस शोध ग्रंथ में उन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित रामकथाओं के अनुशीलन के साथ उनके वैविध्यपूर्ण समंजन को स्पष्ट किया। उत्तर में तिब्बत तथा बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि पूर्वी एशियाई देशों में प्रचलित रामकथा के सौंदर्य और उनके सांस्कृतिक प्रभाव का भी इस ग्रंथ में उन्होंने विस्तार से विवेचन किया है। गोस्वामी तुलसीदास की राम भक्ति के सात्विक और आध्यात्मिक आयाम के प्रति उनके मन में बहुत आदर था। उनका कहना था, जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि ईसा, हिंदी और तुलसीदास, ये वास्तव में मेरी साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं बल्कि गहरा संबंध है। डॉक्टर कामिल बुल्के हिंदी भाषा, तुलसीदास और वाल्मीकि के अनन्य प्रेमी और भक्त थे। उनके शोध ग्रंथ के एक प्रसंग में संस्कृत और इंडोनेशियाई विद्वान होयलास के सवाल पर एक अध्येता का जवाब आता है कि वे रामायण को और भी अच्छा मनुष्य बनने के लिए पढ़ते हैं। रामकथा के इस विस्तार को फादर बुल्के वाल्मीकि की दिग्विजय कहते थे, यानी भारतीय संस्कृति की दिग्विजय। वो कहते थे कि तुलसीदास के कारण मैंने वर्षों तक रामकथा साहित्य का अध्ययन किया है। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से जिस भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है उसमें नैतिकता तथा भक्ति के अनिवार्य संबंध पर बहुत बल दिया गया है। तुलसी के इष्ट देव राम हैं और मैं ईसा को अपना इष्ट देव मानता हूँ, लेकिन हम दोनों के भक्तिभाव में बहुत समानता पाता हूँ। दरअसल उनमें भी तुलसी जैसा ही भक्तिभाव, प्रेम, विनती और समर्पण था। उनका कहना था कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। यदि हम मनुष्य को प्यार नहीं कर सकते तो ईश्वर को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। मानवता और प्रेम के इसी सार्वजनिक भाव ने उन्हें भारत की धरती से जोड़े रखा। रामचरितमानस उनके लिए केवल महाकाव्य नहीं था, वो उनके लिए एक ऐसा जीवन दर्शन था जो उन्हें अपनी आत्मा के निकट लाता था।

फादर कामिल बुल्के का मानना था कि गोस्वामी तुलसीदास रामकथा परंपरा के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका को पढ़ते हुए उनके हृदय में तुलसीदास के लिए जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, उससे उन्हें ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां मिली जो उनके जीवन का स्थायी भाव बन गईं। उनकी दृष्टि में तुलसीदास विश्व के महान कवियों में थे, जिनकी रचनाओं में ज्ञान का अक्षय भंडार छिपा है। वो अक्सर कहते थे कि कला और साहित्य मानव जीवन की गहन उपलब्धियां हैं, क्योंकि मनुष्य की उच्च कल्पनाएं और गहरी अनुभूतियां इसमें अभिव्यक्त होती हैं। इसलिए अध्यात्म भी उन्हें मानव जीवन के उद्देश्य से अलग नहीं कर सकता है। हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने आकर्षण के चलते सन 1951 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। वे आजीवन हिंदी की सेवा में लगे रहे। बुल्के ने बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। मॉरिस मेटरलिंक के प्रसिद्ध नाटक द ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से अनुवाद किया। छोटी बड़ी कुल मिलाकर उन्होंने 29 किताबें लिखीं। हिंदी भाषा साहित्य पर काम करते करते हिंदी भाषा की शब्द संपदा से डॉक्टर कामिल बुल्के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक शब्दकोश टेक्निकल इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी ही बना डाला। इस शब्दकोश का इतना स्वागत हुआ कि बाद में अथक परिश्रम कर उन्होंने एक संपूर्ण अंग्रेजी हिंदी कोश बनाया, जो आज भी हिंदी भाषा का प्रामाणिक शब्दकोश माना जाता है। विशेष बात यह है कि उनके अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग की राह को सुगम बनाया है। उनका पुस्तकालय, जो आज फादर बुल्के शोध संस्थान कहलाता है, इसमें असंख्य किताबें हैं जो उन्होंने अपने खर्चे से मंगवाई थीं, और आज भी कितने ही विद्यार्थी उसका लाभ उठा रहे हैं। फादर बुल्के कहते थे कि दुनिया भर में शायद ही ऐसी कोई विकसित साहित्य भाषा हो जो हिंदी की सरलता की बराबरी कर सके। उनकी हिंदी सेवा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। भारत की मिट्टी में रची बसी उनकी आत्मा राम कथा रसपान करती हुई 17 अगस्त सन 1982 को इस दुनिया से विदा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी ने कहा, मैंने उनमें हिंदी के प्रति हिंदी वालों से कहीं अधिक गहरा प्रेम देखा, ऐसा प्रेम जो भारतीय जड़ों से जुड़कर ही संभव है। उन्होंने रामकथा और रामचरितमानस को बौद्धिक जीवन दिया। विभिन्न धर्मों की आंतरिक एकता के ऐसे अनन्य उपासक को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: प्रकृति हमारी जननी है, प्रकृति हमारी पोषक है। प्रकृति पर आधारित हमारा कार्यक्रम प्रस्तुत है प्रकृति की पुकार।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए, आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
1: धन्यवाद मनीषा जी।
0: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
1: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए।
0: जी,
1: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत के वो जो दो छंद हैं वही अपने आप में काफी हैं पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका अर्थ यही है। यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण के बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो, इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
1: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है। हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो उसे उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर हैं।
0: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
1: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं, और वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास 1 मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके, वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वहीं आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं, उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते हैं तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है। अब लोग सजग हो गए।
0: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
1: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
0: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
0: जी,
1: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
0: जी,
1: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटर जनरेशनल इक्विटी का,
0: इंटर जनरेशनल इक्विटी।
1: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है और बच्चों की क्या माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में एक बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं।
1: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन, फिर 2019 नोटिफिकेशन है। इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है। भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति सब बदल जाती है।
0: जी, आपने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
1: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेसा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देख कर ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहाँ पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं। यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है, जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
0: जी।
1: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है, ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
0: भूमिका की बात तो हो गई, लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
1: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीज़ें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा, जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं आज की तारीख में, बहुत सिंपल, आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
0: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी, वो ये भी थी कि हम हमेशा, हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्व जिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
1: एकदम सही बात,
0: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
1: और तो, इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
0: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
1: एकदम सही।
0: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
1: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं, ये एक बेसिक चीजें हैं
0: जी।
1: और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें, ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
0: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
1: एकदम।
0: अगर हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दाव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
1: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में, जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है
0: जी,
1: बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें
0: जी,
1: स्वयं लिखे और भेजे
0: जी। पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे। स्वस्थ जीवन का

0: श्रोताओं, समय की हथेली पर ठहरा कोई भी क्षण कभी स्थायी नहीं होता। भोर की पहली किरण संध्या में ढल जाती है, फूलों की मुस्कान भी एक दिन मुरझा जाती है, उपवन की रंगत नीरवता बन जाती है और जीवन देखते ही देखते स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन जाता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो दिखाई देता है वो भी एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएगा। किंतु इस नश्वरता के बीच एक सत्य ऐसा भी है जो कभी क्षीण नहीं होता, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश। भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। इसमें बताया गया है कि संसार की क्षणभंगुरता भय का विषय नहीं बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो मोह के बंधनों से ऊपर उठकर शांति, विवेक और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद में आज इसी क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता विषय पर चर्चा करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में
1: जी।
0: और हम उस पृष्ठ पर हैं जहाँ क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर चर्चा है
1: जी।
0: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इस संसार के प्रति आकर्षित चित्त को कहीं भी विश्राम क्यों नहीं मिलता है।
1: इसलिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु से कि तात इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी दृष्टि में चित्त को विश्राम प्रदान करे। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल क्रीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, युवा अवस्था में मन विषयों की तरफ भागता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है उस समय सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। राम जी कह रहे हैं कि ये प्राण भी छोड़ करके शरीर को दूर चला जाता है और मनुष्य इस संसार सरोवर में सिर्फ शुष्कता को प्राप्त होता है
0: जी।
1: उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो ये जो चित्त है, चित्त को ठहरने की स्थिति संसार में कहीं नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, क्षण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम विषयों से आसक्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक हमारे चित्त को शांति देगा। हम अपने अनुभव में भी अगर ध्यान दें, थोड़ी सावधानी से देखें उसे
0: जी।
1: तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जिन विषयों में बहुत सुख और शांति की कल्पना करते थे, उनकी प्राप्ति के बाद हम सुखी और शांत नहीं हुए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये राम जी चूंकि उस समय उत्कट वैराग्य उनको हुआ है विवेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्षणिक मिलता है विश्राम, लेकिन आत्यंतिक विश्राम नहीं मिलता जहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति हो सके।
0: जी जी
1: जी।
0: अच्छा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो संतोष है वो परम सुख है, उसे ही सबसे बड़ा धन भी कहा गया है
1: जी।
0: तो मनुष्य इससे वंचित क्यों होता, कौन है जो मनुष्य को संतोष से वंचित कर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी कहते हैं कि इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तृष्णा जो है आपको किसी भी पदार्थ के साथ सुखी नहीं होने देगी। जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति होगी फिर तृष्णा किसी और की होगी
0: जी।
1: तो ऐसे में तृष्णा रूपी नदी संसार में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए जो संतोष को परम सुख माना ऋषियों ने
0: जी,
1: वो इसलिए कहा। जबकि आज के समय में आप देखें तो संतोष की अवहेलना करने की बात की जाती है कि संतोष करने का मतलब हुआ कि आप तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे, विकास करना है तो आपको लगातार तृष्णा की नदी में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी अवधारणा ही बड़ी अलग है। चूंकि ये वैराग्य प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण से हम कह सकते हैं कि संसार के सत्य का अन्वेषण करते हैं या संसार के सत्य को देख पाते हैं। और जब संसार में कभी असफलता लोगों को प्राप्त होती है तो भी लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग्य एक प्रकार का पलायन उत्पन्न करता है, वो रोग का रूप ले लेता है। लेकिन ये विवेक से जो उत्पन्न जो वैराग्य है वो संसार में चित्त में जो राग और द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति है उसको शांत करता है। तो विवेक का जो वैराग्य है वो स्वीकार्य है, लेकिन अज्ञानता में उत्पन्न वैराग्य मानसिक रोग का कारण बन सकता है।
0: अच्छा, एक बड़ी रोचक सी बात आपने कही कि एक उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है कि अब छलांग लगाइए तृष्णा की नदी में है।
1: जी।
0: ये बात सही है कि खूब सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, ये बात बहुत होती है इन दिनों।
1: जी जी।
0: तो जो मनुष्य है वो जीवन में सपने देखना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया।
0: दृष्टि कैसी हो?
1: दृष्टि ऐसी हो कि संतोष हो। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी नदी है, इसको हम समझें कि हम तृष्णा के वशीभूत ना हो जाएं। वो कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी नदी जो है, ये संतोष रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, यानी संतोष की जड़ को खोद देगी ये। और जब संतोष की जड़ खुद जाएगा तो फिर सुख से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सुख शास्त्रों में, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋषियों की दृष्टि में, संतोष को परम सुख का कारण माना गया। संतोष में सुख होता है। योग में कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोष ही परम सुख है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। लेकिन यहाँ पर तृष्णा की नदी में तो संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि ये नदी संतोष के वृक्ष के जड़ को खोद डालेगी। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से हिलती डुलती रहती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि शरीर में क्षुधा पिपासा ही उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से जीव हिलता डुलता है। और कहते हैं पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह है, इसको इंद्रियों से जो हम सुख लेने की बात करते हैं, उस इंद्रियों को ग्राह की संज्ञा दी गई है, जिसने उस हाथी को या कह सकते हैं पकड़ रखा है। तो ग्राह है ये, लगातार इसे टक्कर मारकर डुबोने में लगा रहता है। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव ही बैठे रह सकते हैं, और वो विवेकी ही अपने आप को संभाल सकते हैं। जहाँ तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार के वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर वृक्षों की शाखाओं पर भटकते रहेंगे, मरकट की भांति कूदते रहेंगे इस डाल से उस डाल।
0: अच्छा, ये बताइए कि संसार में किस प्रकार के महात्मा दुर्लभ हैं?
1: इसके लिए श्री राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, ऐसे महात्मा इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जरा देखिए, कह रहे हैं राम जी की दुख और मोह से जो अपने आप को हमेशा दूर रखता है। जब भी आपत्तियां आती हैं तो आप देखें तो व्यक्ति आपत्तियों से दुखी होता है, और आपत्तियों के आने का मूल कारण होता है मोह। क्योंकि मोह अगर ग्रस्त आप नहीं हैं तो आप आपत्ति का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है संसार में। आमतौर पर आपत्ति आने पर लोग दुखी होते हैं, या फिर मोहग्रस्त होते हैं संसार के विषयों से, या फिर न भी विषयों से तो अपने कार्य जो नित्य कर्म है उसके प्रति भी कई बार व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और संपत्ति पर जिसको अहंकार शून्यता ना हो। आमतौर पर स्वास्थ्य और संपत्ति को लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ कोई उपलब्धि है, और अहंकार में आदमी सोचता ही है कि ये तो हमने नियमित जीवनचर्या अपना रखी है, इस नाते मैं स्वस्थ हूँ। सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर यहाँ पर भी आप अहंकार शून्य हैं, यहाँ पर भी आपके अंदर उस कहते हैं परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है इस समय खोज पाना। तो क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि अहंकार से युक्त भी लोग दिखाई देते हैं, महात्मा
0: एक तरह
1: लोग
0: से
1: भी।
0: वो ये बता रहे हैं कि महात्मा को कैसा होना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं। महात्मा जो होगा वो अहंकार शून्य होगा। वो कभी भी किसी भी विषय से, चाहे अपने त्याग और तपस्या को लेकर के भी, अहंकार से ग्रसित नहीं होगा।
0: अच्छा, श्री राम जो कुछ देख रहे हैं उसमें वो शूरवीर भी देख रहे हैं, तो किसे वो कह रहे हैं कि संसार में शूरवीर कौन है?
1: राम जी कहते हैं कि इस संसार में मैं शूरवीर उसे मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। यानी जो मन आपको विवेक वैराग्य से दूर ले जाएगा, यानी वो तृष्णा की नदी में आपको बहाना चाहेगा, संतोष रूपी वृक्ष की जड़ों को खोदना चाहेगा। फिर ऐसे में जो लोग विवेक और वैराग्य के द्वारा इसको लांग जाते हैं, यानी मन रूपी तरंगों के पार चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तरंगों के पार जाने का मतलब हुआ, ये संकेत समझें कि जहां जल शांत है वहां कोई उस लहर नहीं है, उसमें
0: कोई उथल पुथल,
1: नहीं है। तो ऐसे लोग को मैं सूरवीर मानता हूं जो उस शांति को अनुभव कर रहे हैं। इस संसार में अशांत चित्त नहीं है, क्योंकि जब तरंगे उठेंगी
0: तो उनके हिसाब से सूरवीर वो है जिसका चित्त शांत हो,
1: बिल्कुल ठीक है, वो वीर है। अन्यथा तो संसार में कई बार आदमी अपने पुण्य को लेकर के बहुत आह्लादित होता है, कई बार अपने पाप को लेकर बहुत भयभीत होता है। तो ऐसे में इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, करणीय और अकरणीय के भेद में वो भेद बुद्धि से उलझा हुआ है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग सूरवीर नहीं है, सूरवीर वो हैं जहां तरंगे शांत हो गई हों और चित्त बिल्कुल शांत हो, यानी मन रूपी उत्ताल तरंगों को जो पार कर गए हों, और वो पार आप कर सकते हैं विवेक और वैराग्य से, राग और बुद्धि से पार नहीं किया जा सकता।
0: अच्छा, संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की कामना सभी को है
1: जी,
0: तो क्या कहते हैं श्री राम के लक्ष्मी की जो परिपूर्णता है वो किस तरह से होती है?
1: देखिए, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मी की परिपूर्णता क्षमा, विनय और उदारता आदि सात्विक बलों से होती है। ये सात्विक बल हैं
0: जी।
1: एक कथा भी आती है पुराणों में कि जब लक्ष्मी जी अपने वर का चयन कर रही हैं तो ऐसे में उनकी एक शर्त है कि जो मुझे नहीं चाहेगा वो हमारे चाह का विषय होगा। और लक्ष्मी को चाहने के लिए सारे देवता व्याकुल हैं, हर लोग चाहते हैं कि वरमाला उनके गले में डाल दें वो, लेकिन एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जो शांत बैठे हुए हैं, उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है। तो लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित होती हैं और जाकर के वरमाला उनके गले में डाल देती हैं। तो ऐसे में विष्णु जी का जो चरित्र है वो क्षमा, विनय, शांत, उदारता का है। तो लक्ष्मी इसी सात्विक बल से परिपूर्णता प्रदान करती हैं। अन्यथा लक्ष्मी को प्राप्त करके कभी कोई संतोष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, यानी लक्ष्मी जब अकेले होती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं वो, और वो जब विष्णु के साथ होती हैं तो गरुड़ की सवारी करती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मी सेवा करती विष्णु की नजर आती हैं, बाकी सब लोग लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रतीक बताया गया है कि सात्विक बल ही है जो लक्ष्मी को प्राप्त करके परिपूर्णता की अनुभूति कराता है। अगर ये बल आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी असंतोष और बेचैनी का कारण बनेगी।
0: तो बहुत रोचक सी बात है कि लक्ष्मी की कामना हो लेकिन मन फिर कैसा हो,
1: सात्विक बल के साथ हो।
0: जी जी।
1: आप राजसी होकर के लक्ष्मी के साथ स्थिर नहीं हो सकते।
0: योग वासिष्ठ में मुझे नजर आ रहा था कि संपत्ति और विपत्ति के जो कारण हैं कुछ बताए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप बता दें कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्यों आते हैं, क्या कारण है इसका?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्ति विपत्ति को हटाना चाहता है, संपत्ति को पाना चाहता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है, राम जी ये कह रहे हैं कि ये किसी के चाहने से नहीं होता। आप चाहें कि आपके जीवन में दुख ना आए तो ये आपके चाहने से नहीं होगा, बल्कि कई बार तो हम नहीं चाहने की वजह से उन चीजों को आकर्षित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं बार बार उसे याद करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ये संपत्ति और विपत्ति जो है वो प्रारब्ध कर्म से आती है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व का कर्म है जिसकी वजह से जीव देह धारण करता है, और जब देह धारण करता है तो देह के भोग भी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों उसे मिलते हैं। प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर है जो निकल पड़ा है, और उसे भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। कोई चाहे कि प्रारब्ध से अपने आप को हम बचा लें, और बचाने के लिए अगर प्रयास करके बचा भी ले तो भी उसे फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोग उसका है। इसीलिए ये मानव जो तन है या मानव योनि है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ऐसी योनि है कि आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करके अपने क्रियमाण, जो कर्म आप कर रहे हैं और जो उस कर्म का फल संचित हो रहा है, इन दोनों को आप रोक सकते हैं और प्रारब्ध को भोग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़े हैं, और भगवान के अवतारों की कथा देखें तो वो प्रारब्ध बस पूर्व के कर्म का वो परिणाम ही तो भोगने आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए? प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध कर्म का वो हेतु बनता है।
0: जी अच्छा, असावधान मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो संसार को किस तरह से देखती, कैसा दिखता है उसको संसार?
1: असावधान मनुष्यों की बुद्धि में यह संसार चिरस्थायिता की प्रतीति कराता है। तो जब इस संसार में हम किसी चीज को स्थाई देखते हैं
0: जी।
1: तो इससे ये समझ लें कि हमने सावधानी पूर्वक संसार को नहीं देखा
0: नहीं
1: है
0: देखा,
1: अगर सावधानी पूर्वक देखें तो यहाँ पर सारी चीजें क्षण में नष्ट हो रही हैं। महात्मा बुद्ध ने जो क्षणभंगवाद उन्होंने बताया कि ये संसार में हर चीज क्षण में भंग हो रही है, उन्होंने सावधानी के साथ इस चीज को जाना। इसीलिए आप देखते होंगे कि बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस उनकी एक मेडिटेशन टेक्निक है कि आप इतने सजग रहें कि जहां पर आपको संसार के सत्य से कभी भी वंचित ना होना पड़े। यानी सत्य संसार का क्या है? क्षणभंगुरता। तो वो क्षणभंगुरता आपको निरंतर दिखाई दे, लिहाजा आप संसार में कभी भी राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे, आपका चित्त शांत होगा। क्योंकि जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो भी क्षण में मिट जाएगा और जिसके प्रति आपको राग है वो भी, उसकी भी अवधि क्षण भर की है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके चित्त में जो राग देशात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी शांति आनी चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। ये तब होगा जब आप सावधान होकर के इस संसार को देखेंगे। तो संसार को सावधानी से देखने के बाद यहाँ संसार में स्थायित्व तो नहीं दिखता और असावधानी पूर्वक जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं या संसार में जो भोगों में संलग्न हैं उनको संसार में चिरस्थायिता की प्रतीति हो रही है।
0: अच्छा, इसमें मनुष्य को अपराधी और उपकार शून्य प्राणी कहा
1: जी,
0: ऐसा क्यों कहा?
1: ऐसा इसलिए कहा कि अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेम की बात राम जी करते हैं
0: जी।
1: कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसा है, ये मतलब कहते हैं कि दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा वो मानता है अपने आप को। ऐसा विश्वास करने का कारण क्या है कि जब इस संसार में श्वास को देने वाला पेड़, कहते हैं ना कि श्वास जगत में सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि जीवन का संबंध श्वासों से है और उन श्वासों का प्रदाता वो वृक्ष है जो मनुष्य अपने भोग या अपनी आवश्यकता के लिए उसको भी काट देता है। तो कहते हैं ऐसा उपकार शून्य प्राणी इस संसार में सदा जीवित रहेगा, ये कैसे भरोसा करने की बात है जब वो पेड़ों के उपकार को भूल करके उसे भी काट दे रहा है।
0: जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: एक दिन वो भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा।
0: तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात भी यहां आती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि चित्त को शांत स्थिर करने की बात थी, लगातार हम सुन रहे हैं लक्ष्मी के संदर्भ में आपने ये कहा कि जिसके चित्त में उद्वेलन न हो लक्ष्मी उस तरफ आकर्षित होती है। अशांत कौन रहता है?
1: अशांत रहता है विषयासक्त मनुष्य। आंतरिक अशांति के विघात के लिए ये जो विषय की आसक्ति है ये हमेशा तैयार रहती है। यानी आपके जीवन में अशांति का अनुभव तभी होता है जब किसी विषय के प्रति आपके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए। और विषय क्या करते हैं? राग द्वेष आपके जो अनुभव हुए हैं उस विषय के साथ, उस अनुभव के आधार पर राग द्वेषात्मक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। राम जी कहते हैं कि विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। विषय जो है विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है और दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक अशांति के विघात के लिए तैयार है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। विषयासक्त व्यक्ति तत्काल मूर्ता या मूर्छित हो जाएगा विषयों के प्रभाव में। तो जब मूर्छित होगा तो वो अपने चित्त की शांति को जान नहीं पाएगा
0: जी।
1: और राम जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिसमें दोष नहीं है, वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है, वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है, और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है, बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्म लोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। सोचिए ब्रह्म लोक में जो मतलब निवासी हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है वो कहते हैं कि रुद्र और विष्णु के दृष्टि में वो क्षण है वो कल्प।
0: अच्छा, तो चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बात है वो यही है, तो इसकी अवधारणा को मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें
1: जी। इसको ऐसे देखें कि ब्रह्म लोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, जिसे चिरजीवन और क्षणजीवन की जो बुद्धि है, ये दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य है। ये भी सत्य नहीं है, राम जी कह रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि चिरजीवी हैं ये, तो कहते हैं ये भी दृष्टा की बुद्धि में की कल्पना है। जो दृष्टा इस जगत को देख रहा है, जगत के दृश्यों को देख रहा है, इस कारण से वो दृष्टा है। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि की कल्पना के कारण ये चिरजीवन और क्षणजीवन की अवधारणा उत्पन्न हो रही है। जबकि ये कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है तो ये कल्पना असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उसमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, कास्ट के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेतों के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जो ये भी एक दृष्टा की कल्पना है, इस नाते ये असत्य है। इसका भी कोई जो अवधारणा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि राम जी के वैराग्य का प्रकरण है, राम जी ये कह रहे हैं कि उनके समय में भी ये बात रही होगी चिरजीवन और क्षणजीवन की, तो उन्होंने कहा ये भी मेरी दृष्टि में असत्य है क्योंकि ये दृष्टा की कल्पना मात्र है।
0: अच्छा, श्रेष्ठ पुरुषों के पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य की गति पर भी उन्होंने चर्चा की है, तो क्या कहते हैं वो?
1: वो कहते हैं कि जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, पद का अर्थ स्थान, धन, वैभव आदि की जो कल्पना लोग करते हैं, को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है। क्योंकि वो चित्त के द्वारा मारा जा रहा है, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का पद चाहते हैं तो आपको उसमें राग हो गया है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ये आपके चित्त को गिरा देगा और गिरने के कारण निश्चित ही आप गर्त में गिरेंगे। जैसे पशु पक्षी हरी लताओं को खाने के लिए गिर पड़ते हैं पहाड़ों के खाई में, उसी प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के पद को पाने की चेष्टा में अपने चित्त को संसार के विषयों या उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद प्रतिष्ठा में अपने को गिरा देता है, बजाय अपने स्वरूप को जानने, अपने विवेक को जागृत करने के।
0: जी जी, तो क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं।
1: जी,
0: मैं चाहती हूँ कि चलते चलते बहुत संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा का जो सार है वो रख दें।
1: मैं इस चर्चा का सार यही कहूंगा कि इस संसार में सावधानी पूर्वक अगर हम व्यवहार करना सीखें और संसार को सावधानी पूर्वक देखें, तो निश्चित ही इस संसार में जो तृष्णा की नदी बह रही है और जिसने संतोष रूपी धन को कह सकते हैं कि मतलब समाप्त कर रखा है, और व्यक्ति ऐसे धन की प्राप्ति के पीछे लगातार भाग रहा है जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को बढ़ा रही है। क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करके चित्त की परिपूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपके पास सात्विक बल हो। सात्विक बल में क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके पास अगर शक्ति आती है तो इस शक्ति से आप अपने आसपास के वातावरण को पोषित करें, क्योंकि सात्विक बल पोषण का काम करता है और ये बल विष्णु जी के पास है। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने के देवता हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं, तो ऐसे में पालन का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है। तो जब पालन वाला बल आपके अंदर आएगा तो उस बल से आप लक्ष्मी के साथ परिपूर्णता की अनुभूति करेंगे, अन्यथा लक्ष्मी के पीछे भागते हुए तो सारे लोग दिखाई देंगे और कभी भी वो यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, उसमें संतोष नहीं आना है, क्योंकि संतोष सुख की प्राप्ति सात्विक बल से ही हो सकती है।
0: बहुत अच्छी चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता के विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित थे इस बातचीत के लिए योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

0: पहले आप सुनेंगे हवाइन गिटार वादन, कलाकार हैं सुनील पावगी। और दूसरी प्रस्तुति होगी कल्पना झोकरकर के शास्त्रीय गायन की। ये प्रस्तुतियां दी गईं भारत भवन के स्थापना दिवस के मौके पर। आइए पहले सुनते हैं हवाइन गिटार वादन सुनील पावगी का।
1: एक छोटी सी धुन सुना रहा हूं जिसमें कुछ कुछ चीजें भी बीच में लगाऊंगा, आप पहचाने तो बहुत अच्छा। मिश्र पीलू में एक धुन है,

0: और यह गायन कल्पना झोकरकर का।
1: राग भैरवी में एक टप्पा और तराना पेश करती हूँ।

ये था आज का खास कार्यक्रम जिसमें आपने पहले सुना हवाइन गिटार वादन सुनील पावगी का और दूसरी प्रस्तुति रही कल्पना झोकरकर के शास्त्रीय गायन की। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आपने सुना हमारा विशेष कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रासलीला समारोह में।
1: अगली लीला में प्रवेश करेंगे जो कि शिव जी की बहुत ही सुंदर लीला है। शिव जी कैसे हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है और उसको दर्शन के लिए भगवान शिव स्वयं गोकुल पधारे हैं और कन्हैया जी के दर्शन करने में जो प्रसंग है, जो वृतांत है, वो उस लीला के माध्यम से आप लोग सभी देखेंगे, समझेंगे।

आकर के भगवान ने ब्रज मंडल में सर्वप्रथम उस भूमि को प्रणाम किया। यही पावन भूमि

0: क्यों नहीं, हमें यह प्रतीत होता है कि यही वह भूमि है जहां पर स्वयं नारायण अवतार लेकर के आए हैं और यही मां यशोदा के भवन है। इन महलों में ही प्रभु ने अवतार लिया है। सर्वप्रथम मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं।
1: भगवान ने आकर के ब्रज में ब्रज भूमि को साष्टांग प्रणाम किया। काशी से चलकर भगवान भोलेनाथ उस रज को चूमा, अपने शीश पर चढ़ाया भगवान ने।
0: और यदि हमें अपने नाथ के दर्शन करने हैं तो सर्वप्रथम हमें माँ यशोदा को बुलाना होगा।
2: नंद भवन में आय के दीनों अलख जगाए, माता बाहर निकस तू हमको दरस कराए।
0: माँ यशोदा, अरे कौन है बाबा, माँ बाहर तो आओ, हम हैं योगीराज।
3: आके योगीराज,
0: हाँ बाबा
3: आ रही हूँ बाबा,
0: आओ।

0: बाबा मैं आपसे कितनी तो अलग हूँ और आपके लिए कि मैं ये अलग नहीं माँ, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा मैं आपकी काजी विद्या लेके आई हूँ।
1: क्या
0: तो आपको विद्या में चाहिए? सोनो चांदी वस्त्र आभूषण सो आप ले लो बाबा।
1: नहीं माँ, देखो हम आपके द्वारे पर भिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। जो हमारे हृदय में लालसा है, जो हमारे हृदय की इच्छा है, आप उसे समझो माँ।
2: ना चाहिए तेरो पाठ पीतांबर ना

0: आपका ये हीरा मोती जवाहरात हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे गुरु की यही आज्ञा हुई है कि शंकर जाओ और माँ यशोदा के भवनों में जाकर उनके लाला का दर्शन करो।
1: कहा कि बाबा आप मेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो देखो बाबा मैं अपने लाला के दर्शन तो आपको नहीं कराऊंगी।
2: विनती करत, माता यशोदा हाथ जोड़कर विनती कर रही है बाबा भोलेनाथ के, क्यों कि आपका स्वरूप ऐसा है।

0: बाबा मैं आपसे हाथ जोड़ के बार बार यही विनती कर रही हूँ, अरे आप मेरे लाला के दर्शन करवे आए हैं, अपने रूप को तो देखो, कातर विष्णु को श्रृंगार है रहे हो है, और मेरे लाला बारो है छोटो है
1: जो चाहिए।

0: भागा जो कछु आपके भिक्षा में चाहिए, सोनो चांदी वस्त्र आभूषण लोटा सोटा तुम्मा कटारी वे आप मुझसे मांग लो, मैं आपको अवश्य ही भिक्षा दूं।
1: नहीं माँ, जो भी आप देना चाहती हो वह हमें कुछ नहीं चाहिए, धन की नहीं चाह ना इच्छा धरा धाम होगी, क्योंकि हम तो उदासी नित शमशान वासी हैं। अमृत की चाह नहीं क्योंकि हम बिजिया विस्पान करें, अरे अन्न के लिए घर अन्नपूर्णा दासी हैं। हम सर्व सुख के दाता व मुक्ति के विधाता, क्योंकि हम मुक्ति करें दान हम व काशी के वासी हैं। तेरी कृपा सो कमी कछु हमारे नहीं, केवल ये अखियां लाल दर्शन की प्यासी हैं।
2: कन्हैया लाल की,
1: हमको केवल अपने लाला के दर्शन करा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए।
0: अरे बड़ो हटेलो बाबा है, मैं मने कर रही हूँ और लाला के दर्शन करा दे। बाबा आपको भिक्षा लेनी हो तो ले जाओ, मैं आपको लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी।
1: देखो माँ, हम आपकी बार बार विनती कर रहे हैं कि आप हमें अपने लाला के दर्शन करा दो।
0: नहीं कराऊंगी।
1: नहीं तो माँ सोच लो, आप हमें जानती हो, हम योगी हैं, योगी राज।
0: अरे बाबा आप बोल रहे हैं मैं एक त्रिया हूँ, एक त्रिया होए।
1: माँ देखो हम अपनी हट पर आ गए ना, तो 12 और 12 24 वर्ष तुम्हारे द्वारे पर धूनी रमा करके बैठ जाएंगे।
0: बाबा तुम 12 और 12 24 तो कहा, 24 दर्शन नहीं कराऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, मेरे लाला रो रहे होएगा। आप जाओ यहाँ।

0: सुयस।
1: आप बार बार कह रही हो कि मेरो लाला बारो है, बारो
2: बारो है।
1: अरे वो बारो नहीं है, वह तो काल हूँ को काल है और मेरो प्रतपाल है माँ। और आप नहीं जानो हो कि वह आपको लाला या संसार को पालन करने वारो है। आप नहीं जानो
2: मेरो लाला।
1: हाँ, और आपको मुझे देख करके डर लग रहा है।
2: बिल्कुल लग रहा है,
1: परंतु माँ तुम्हारा जो लाला है ना वह नहीं डरेगो।
2: देखो आप कह रहे मेरो लाला संसार को पालन करता है, सारे संसार को स्वामी है। अरे बाबा अभी मेरो लाला मेरे घर को स्वामी नहीं भयो।
1: पांच तत्व ते न्यारो है तेरो लाला, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इन सबसे अलग है तेरो लाला। तू नहीं जाने, हम जाने हैं तेरे लाला को।
2: ऐसे कह के मेरे छोरा नजर लगाए भी आयो है।
1: अरे नजर नहीं लगेगी भैया,
2: मैं तो हाथ छोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ।
1: अरे माँ मैं आपकी धोख,
2: अरे मैं हूँ आपकी धोख दे रही हूँ महाराज, परंतु मैं आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। आप जाओ यहाँ से,
1: एक बार अपने लाला के दर्शन करा दो माँ और हम वापस चले जाएंगे।
2: अरे बाबा जब वही डर लग रहे हो, मेरे लाला तो छोटो है और डर जाएगा। आप जाओ यहाँ से।
3: माता यशोदा ने मना कर दिया और मैया यशोदा चली गई इधर बाबा भोलेनाथ।
1: माँ हमने तुम्हारी विनती बहुत की है, परंतु हम अपने नाथ की विनती अवश्य करेंगे। यदि उनकी इच्छा होगी तो वो हमें दर्शन अवश्य ही देंगे, और यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम वापस चले जाएंगे। आपने देखा कि हमने आपकी माँ की कितनी विनती की, परंतु उन्होंने हमें आपका दर्शन नहीं कराया। आपसे भी हमारी विनती है, यदि आपकी इच्छा हो, क्योंकि हम आपके दर्शन के लिए काशी से चलकर के यहाँ आए हुए हैं, तो एक बार अपना दर्शन हमें अवश्य ही करा दो।
4: भोलेनाथ से निराला

0: बहुत प्रयास किया दर्शन के लिए, और इधर माता जसोदा ने देखा कि संत परेशान हैं, तो बाल कृष्ण को लाई जसोदा, कर अंचल पट छाया।
1: अरे बाबा,
0: महलों में ले गई।
1: आओ,
0: और ठाकुर
1: परेशान मत हो, आओ मैं आपको अपने लाला के दर्शन कराऊं।
2: क्यों नहीं माँ?
1: क्योंकि जब भी आप गए मेरे लाला रो रहे हो।
2: क्यों नहीं, दर्शन कराऊं माँ, आओ।
3: ये थी रेडियो रिपोर्ट रासलीला समारोह के दूसरे दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अमा गजबी काका, जरा सिरके वाले प्याज तो पकड़ाइए और दो रोटी भी लेते आइए।
1: आया महमूद भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
2: ये लो, ये रही तुम्हारी दो रोटियाँ और ये सिरके वाले प्याज।
0: अमा इतने सारे?
2: ठीक है, खा लो। और कुछ लाऊं?
0: नहीं नहीं। हाँ, एक काम करिए, अपने टेप रिकॉर्डर पर कोई भड़कता भड़कता गीत लगाओ ना। अमा ये क्या देशभक्ति के गीत लगा रखे, बदल दो इसे।
2: माफ करना भाई, मैं तो सिर्फ यही गाने चलाता हूँ, और गीत मेरे पास हैं ही नहीं। मुझे और मेरे तोते को सिर्फ आजादी और देश प्रेम के गीत और कहानियाँ ही अच्छी लगती हैं। ये बात यहाँ आने वाले सभी जानते हैं। जब से मैंने इसे पिंजरे से आजाद किया है, इसे आजादी और प्रेम का सच्चा अर्थ पता चल गया है। इसीलिए मिट्टू, मिट्टू मिया मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें देश के दीवाने शाही शहदा नूरे इस्लामुद्दीन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की कहानी सुनाता हूँ। सुनोगे?
3: सुनूंगा, सुनूंगा, सुनूंगा। हाँ।
2: तो मिट्टू, कहानी शुरू होती है। शाही शहदा नूरे इस्लामुद्दीन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की सरजमी से, मैसूर की पुरानी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के बाहर लाल बाग में। यहां फतेह अली, टीपू सुल्तान, उनके वालिद सुल्तान हैदर अली और उनकी दादी जान फातिमा बेगम की रूहें कब्रों की सूरत में आज भी मौजूद हैं। वो टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, और अंग्रेजों ने भी टीपू सुल्तान को टाइगर कहा था। गाजी टीपू सुल्तान की शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी कौम उनसे सीधे टक्कर लेने से घबराती थी। टीपू को बहादुरी, हिम्मत और हौसलों की दौलत विरासत में अपने अब्बा सुल्तान हैदर अली से ही नसीब हुई थी। सुल्तान हैदर अली एक मामूली सैनिक का बेटा और मामूली सा ही सिपाही था जो मैसूर की सेना में नौकरी करता था, लेकिन अपनी सूझबूझ और शूरवीरता के कारण वो मैसूर का सुल्तान बन गया। उसे केवल मैसूर का सुल्तान नहीं, एक बहुत बड़ी सल्तनत का शासक बनना था। उसने मैसूर के आसपास के इलाकों पर विजय हासिल कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। सुल्तान हैदर अली को केवल एक ही बात का गम था कि उसके कोई औलाद नहीं थी।
4: हैदर, हैदर अली।
5: अरे अम्मी जान, आप हमारी आरामगाह में? अम्मी, हमें बुलवा लिया होता।
6: अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
4: खुश रहो बेगम, अल्लाह तुम्हारी झोली में चांद सा बेटा दे।
5: अम्मी, क्यों आप हमारी दुखती रग पर हाथ रख रही हैं? इसी गम में तो हमारी बेगम दिन रात खुली जा रही है।
4: फिक्र मत करो बेटी, तुम लोग फकीर टीपू मस्ताना औलिया के पास माथा टेकाओ। सुना है उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। हैरान मत हो मेरे बच्चे, शायद अल्लाह यही चाहता है।
5: जी अम्मी जान, मैसूर का सुल्तान हर फकीर के आगे सर झुकाने को राजी है।
4: अल्लाह तुम्हें मुबारक दिन जल्दी ही नसीब करेगा बेटा।
5: अम्मी जान।
0: तो गजबीये काका, क्या सुल्तान हैदर अली ने अपने बेटे का नाम फकीर टीपू मस्ताना ओलिया के नाम पर फतेह अली टीपू रखा था?
2: हाँ महमूद, उन्हीं दिनों अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा पाकर हैदर अली दिल से और भी मजबूत बन गया था। हैदर अली एक नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे कर चुका था। हैदर अली की बहादुरी और बढ़ती हुई विरासत मराठे, निजाम और अंग्रेज सभी की आंखों का कांटा बन रही थी। हैदर ने टीपू को समयानुसार युद्ध और बुद्धि दोनों में गजब का माहिर कर दिया था, और टीपू बहादुरी में अपने वालिद सुल्तान हैदर अली से 21 ही था।
0: अच्छा?
2: हाँ, सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार जंग जीती थी।
7: हैदर अली ने अंग्रेजों को हराने के लिए टीपू के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया।
8: सुल्तान हैदर के बेटे टीपू की सेना इधर ही आ रही है।
9: इधर मद्रास में हकआउट उसे कैसे पता चला कि हम इधर पार्टी कर रहे हैं?
8: Oh,
9: शेख सारा मजा खराब कर दिए। Hey, listen all of you. जल्दी इस शिप पर चढ़ जाओ। सुल्तान हैदर अली का बेटा टीपू सेना के साथ इधर आ रहे हैं। जल्दी
10: कहा गए नामकूल फिरंगी? खाने पीने का सामान बिखरा हुआ है, लगता है अभी अभी भागे हैं कायर।
11: छोटे सुल्तान वो देखिए, उधर देखिए, फिरंगी डर कर समुद्री जहाज में भाग रहे हैं।
10: इसका मतलब किसी ने उन्हें हमारे आने की खबर कर दी थी। कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी है जिस पर सेंट थॉमस ने अपना कब्जा किया हुआ है, वहां चलते हैं, वही अंग्रेजों की छटनी और कटनी करेंगे। चलो
11: चलो चलो
10: चलो
11: चलो चलो, चलो!

हैदर अली की ताकत अंग्रेजों के लिए जितनी चिंता का विषय थी उतनी ही निजामों और मराठों के लिए भी। इन तीनों ने हाथ मिला लिया, लेकिन इसका पता चलते ही हैदर अली ने मराठों को लालच देकर उन्हें अपनी ओर कर लिया। निजामों को भी लालच दिया गया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। लेकिन युद्ध के बीच ही अंग्रेजों का विरोध कर उनसे अलग होकर वो हैदर अली से मिल गए। लेकिन ढुलमुल निजाम हैदर अली को भी युद्ध में अकेला छोड़कर भाग गए। मजबूरन हैदर अली को अपनी फौज को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। ये देख अंग्रेजों ने हैदर अली के हारने की अफवाह उड़ा दी। ये सुनकर उनकी वालिदा फातिमा, जो युद्ध के मैदान से 200 मील दूर हैदर नगर में थी, परेशान हो गईं। और फातिमा बेगम अपने बेटे हैदर अली की हौसला अफजाई के लिए बरसाती भयानक रात में ही 1000 घुड़सवार सेना और बुरखा पहने 200 औरत घुड़सवारों के साथ चल पड़ी। 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वो युद्ध के मैदान में जा पहुंची।

0: सुल्तान का मर्तबा बुलंद हो, वालिदा साहिबा तशरीफ लाई है।
1: अम्मी जान, इतनी सुबह यहाँ जंग के मैदान में?
2: हैदर, हैदर मेरे बच्चे।
1: अम्मी जान आप यहाँ?
2: हमने सुना कि आप जंग से।
1: अम्मी जान,
2: नहीं नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता था। हमारा हैदर सीने पर तलवार खा सकता है, पीठ पर नहीं। हमें यकीन था कि आप हमारे दूध को शर्मिंदा नहीं करेंगे।
1: हमारे पीठ दिखाने की खबर अंग्रेजों की एक चाल थी अम्मी जान।
2: इसीलिए हम चले आए। हम चाहते हैं कि आप फिरंगियों को इस वतन से भगा दें।
1: अम्मी जान,
2: हैदर अली के नाम का जलवा हर तरफ दिखाई दे। हम दुआ करते हैं कि जब तक आपकी सांस में सांस है, आप कभी हार का मुंह ना देखें। आपकी हमेशा फतेह हो।
3: आमीन।
4: उस युद्ध के बाद हैदर अली ने मंगलौर में टीपू को अंग्रेजों का सामना करने के लिए भेजा। बहुत ही भयानक युद्ध था। फिरंगियों के पांव बुरी तरह उखड़ गए। इस फतह के बाद टीपू के नाम से भी अंग्रेज खौफ खाने लगे। इस बात का जश्न मनाया गया और मद्रास के किले पर एक चित्र टांगा गया।
5: अरे वो देखो, किले की दीवार पर तस्वीर। तख्त पर हमारे सुल्तान हैदर अली बैठे हैं।
6: कितनी खूबसूरत तस्वीर
5: है।
6: अरे इस तस्वीर में अंग्रेज लोग सिर झुकाए कागज दे रहे हैं हमारे सुल्तान को।
7: जैसे कोई संधि पत्र हो, हमसे समझौता कर लो वरना हम मर जाएंगे।
5: अरे अरे, ये सूंड वाला आदमी कौन है जो अंग्रेजों के साथ खड़ा है?
6: सूंड वाला?
5: हाँ।
8: अरे ये तो अंग्रेज का सेनापति स्मिथ लग रहा है।
5: स्मिथ? अरे उसकी सूंड तो देखो।
6: सूंड से पैसे भी गिरा रहा है हमारे सुल्तान के साथ।
4: वॉरेन हेस्टिंग्स इस लड़ाई में अंग्रेजों की दुर्दशा से बुरी तरह घबरा गया। उसने सर आयरकूट की कमान में सेना और पैसा भेजा, पर वो भी तीन बार टीपू से हार कर वापस लौट आया। इसी दौरान सुल्तान हैदर अली की पीठ में फोड़ा हो गया, जिसके कारण उसे अर्काट के किले में लौटना पड़ा। हैदर अली की तबीयत बिगड़ने लगी।
1: टीपू,
9: अब अजान,
1: हम नहीं जानते कि हम और कितने दिन के मेहमान हैं।
9: ऐसा ना कहें बजान।
1: लिहाजा हम चाहते हैं कि
9: अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आप हजारों साल जिए।
1: टीपू, तो लम्हे आजादी के साथ जीना भी जिंदगी भर का जीना है बेटा।
9: बजान,
1: हम जानते हैं इस वक्त अंग्रेज हमारे सर पर तलवार के मानित लटके हुए हैं।
9: आपको अपने टीपू की बहादुरी पर यकीन नहीं है?
1: इसीलिए तो बेटा, इसीलिए हम अपने शेर टीपू पर फक्र करते हैं। अंग्रेज अब सुल्तान हैदर अली से ज्यादा सुल्तान फतेह अली टीपू से डरते हैं।
9: सुल्तान फतेह अली टीपू?
1: हाँ।
9: अब्बा आप ये क्या कह रहे हैं?
1: टीपू बेटा, आपको दुख होगा कि सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और निजाम अंग्रेजों के आगे सर झुका चुके हैं।
9: जी।
1: नाना फड़नवीस के सामने भी सुलहनामा पेश हो चुका है। टीपू
9: जी,
1: ऐसे नासुक मोड़ पर हम अकेले आपके सहारे इतनी बड़ी सल्तनत का भार छोड़कर जा रहे हैं, मगर क्या करें, शायद अल्लाह ताला ने हमारा सुख यहीं तक लिखा था।
9: अब्बा जान,
1: हम जानते हैं कि आप हमसे भी ज्यादा बहादुर और नेक दिल हैं। हमें यकीन है टीपू कि आप हमसे बेहतर सुल्तान और जाबाज साबित होंगे। कल ही आपकी ताजपोशी की रस्म अदा की जाएगी। आप जाएं और तैयारी कर लें।
9: जी अब्बा जान, जरूर।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: सात सितंबर सन 1782 को वीर सुल्तान हैदर अली संसार से विदा हो गया। अब मैसूर सल्तनत की बागडोर अकेले टीपू सुल्तान को ही संभालनी थी। टीपू बहादुर था पर चालबाज नहीं, इसीलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान को हराने के लिए चालें खेलने लगे। करीब 2 साल बाद ही उन्होंने टीपू सुल्तान को संधि पत्र भेजा कि वे लोग टीपू को हैदर अली का वारिस मानते हैं और मैसूर उनकी सल्तनत है, इसलिए वे मैसूर पर आक्रमण नहीं करेंगे, ताकि टीपू भी अंग्रेजों पर आक्रमण न करे। लेकिन इंग्लैंड से वॉरेन हेस्टिंग्स के स्थान पर कॉर्न वॉलिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, जो चालें खेलने में माहिर था।
3: वेल निजाम साहब, आपकी कौम हमसे टीपू सुल्तान के खिलाफ कदम उठाने में मदद चाहती है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अभी अभी गवर्नर जनरल बनकर आए हैं, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त आने पर हम खुद आपकी मदद करेंगे।
4: ओके सर, जैसा आप कहें, हम चलते हैं। खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज। हम भी टीपू सुल्तान को हराना चाहते हैं, लेकिन किसी ऐरे गैरे के साथ मिलकर नहीं। हमें टॉप पर रहना है। जेरी।
5: यस सर।
3: हमने सुना है कि फ्रांसीसी टीपू सुल्तान के अच्छे दोस्त बन गए हैं। अभी अभी अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से फिसल कर आजाद हुए हैं। कहीं फ्रांसीसी हमें कमजोर समझ कर भारत पर अपना कब्जा ना जमा लें। अगर टीपू सुल्तान उनके साथ मिल गया तो जेरी बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे उसे हराने। फ्रांसीसी लोगों और टीपू सुल्तान पर नजर रखो।
5: ओके सर, ओके।
3: मुझे मराठों और निजाम को एक दूसरे के खिलाफ रखना होगा। दोनों को लालच दूंगा कि टीपू सुल्तान से जीती गई जमीन दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। हम तीनों एक साथ ही लड़ाई करेंगे। Long live our queen.
6: Tipu Sultan, Zindabad.
7: Tipu Sultan, Zindabad.
8: Tipu Sultan, Zindabad.
9: Tipu Sultan, Zindabad.
10: Tipu Sultan, Zindabad.
11: Tipu Sultan, Zindabad.
2: मद्रास और बंगाल में लड़ा गया ये युद्ध कॉर्नवालिस की एक बहुत बुरी हार साबित हुआ। लेकिन कॉर्नवालिस ने अपना शैतानी दिमाग लड़ाया और टीपू सुल्तान के बड़े बड़े अमीरों और सरदारों को मोटी मोटी रकमें अदा कर अपनी ओर कर लिया। कुछ खुराफाती लोगों को फौज में भर्ती कर दिया। दूसरी तरफ मराठों और निजामों को भी एक साथ युद्ध के लिए फिर से तैयार किया। टीपू सुल्तान गैरों के हत्थे तो नहीं चढ़ा, लेकिन अपनों की बेवफाई और नमक हरामी से बुरी तरह घिर गया। सुमरपीठ के बुर्ज की यह हार इतिहास में उसकी बहुत बड़ी हार थी। उसे अपने लोगों की जान बचाने और अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से सुलह करनी पड़ी। उसका आधा राज्य तो मराठों और निजामों के बीच बांट दिया गया था। बाकी के राज्य के बदले उसे एक बहुत ही दर्दनाक फैसला करना पड़ा।
0: सुल्तान, क्या हुआ? क्या फैसला किया अंग्रेजों ने? वो हमारा आधा राज्य छोड़ रहे हैं ना?
12: बेगम, आपको हम पर यकीन है?
0: जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है? हम आपके शरीके हयात हैं, क्या हमसे अपना दुख नहीं बांटिएगा?
12: हमने जो फैसला अपनी आवाम और अपनी कौम को बचाने के लिए किया है, उसमें आप हमारा साथ देंगे ना?
0: जी।
12: हम जानते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर हमें ये शर्तें माननी पड़ी, लेकिन खुदा गवाह है बेगम, हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है।
0: ऐसा क्या फैसला हुआ है? हमें बताइए ना, दर्द को अकेले जस्प ना कीजिए, बताइए।
12: फिरंगी हमारी सल्तनत के हर जाने की शक्ल में 3 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। 1 करोड़ तो हम दे चुके हैं, बाकी के 2 करोड़ के लिए हमने उनसे 2 साल का वक्त मांगा है।
0: तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
12: लेकिन फिरंगी, वक्त के एवज में अपने पास कुछ जमानत रखना चाहते हैं।
0: तो
12: हमें उनकी शर्त माननी पड़ी बेगम, और उस शर्त के मुताबिक हमें अपने दोनों बेटों को उनके पास जमानत के तौर पर रखना होगा।
0: नहीं, नहीं, नहीं, वो तो नन्हे नन्हे 8-10 साल के बच्चे हैं।
12: आप हम पर भरोसा रखिए बेगम, हम वक्त से पहले ही अपने बच्चों को उन दरिंदों के कब्जे से छुड़ा लेंगे। हमारे बच्चों को वो हिफाजत से रखेंगे, उन्हें सिर्फ हमारी सल्तनत का लालच है, और वो हमारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। बस
13: अम्मी जान, अब्बास सुल्तान ने जो फैसला किया है उसमें हम उनका पूरा साथ देंगे। आप हमारी फिक्र ना करें।
14: बिल्कुल,
13: हम बहादुर शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की औलाद हैं।
12: मेरे बच्चे,
0: मेरे बच्चे,
2: समय की ऐसी लाचारी टीपू सुल्तान की जिंदगी में पहली बार आई थी, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। इन 2 सालों में उसने अपनी बिखरी ताकत को जमा किया, नए सैनिक, नए हथियार जमा किए, अपने बचे हुए उजड़े राज्य को फिर से लहलहा दिया, और समय से पहले ही अपने बच्चों को छुड़ा लाया। अंग्रेज हैरान थे, वो तो इस ताक में थे कि टीपू अपना वादा तोड़े तो उसकी बाकी की जमीन वो हड़प जाएं, लेकिन एक बार फिर वो मात खा गए। अंग्रेजों ने मराठों और निजामों को भी आपस में उलझाकर उनकी लड़ाई करवा दी, और इधर टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगाया कि वो फ्रांसीसियों से मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और फिर फरवरी सन 1799 में अंग्रेजों के सैनिक टीपू के राज्य की ओर फिर से कूच कर गए। उन्होंने टीपू के बार बार सुलह के पैगाम को नजरअंदाज कर लड़ाई शुरू कर दी। इस बार टीपू सुल्तान मेहताब बाग, जो राजधानी और किले का मुख्य द्वार था, वहां अपने ही विश्वासपात्र मीर सादिक के विश्वासघात का शिकार हो गया।
15: अरे उधर देखो, मीर सादिक रास्ता दिखा रहा है, चलो किले की उस टूटी दीवार के पीछे से निकल जाओ, जल्दी जल्दी, क्विक, तेजी, किले के अंदर सैनिकों पर टूट पड़ो, चलो।
12: क्या फिरंगी सेना किले के अंदर? ये कैसे आई?
16: सुल्तान, मैंने मीर सादिक को किले की टूटी दीवार के पास चुपके से जाते देखा था, उसी ने धाकाबाजी की है सुल्तान।
15: मीर सादिक, मारो, मारो, मारो, मारो, हमला!
16: सुल्तान गोली लगी है, सुल्तान को गोली लगी है।
15: टाइगर टीपू इज डेड।
2: और इस तरह शेरे मैसूर नूरे इस्लामुद्दीन टीपू सुल्तान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया।
4: गजबिये काका, वो ऊंचे दर्जे का सेनापति, वीर योद्धा, बहादुर, नेक दिल, जनता का प्रिय सुल्तान था। जब तक वो जिया उसने अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा, है ना?
2: हाँ महमूद, और जब तक टीपू सुल्तान जिया, स्वतंत्र जिया, टीपू सुल्तान का नाम हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया।
14: जय हिंद।
17: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा।
18: अभी आपने सुना कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर ना आए।
3: नमस्कार, मैं हूँ कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओ, आज के युग में इंसान अपने सर्वाइवल के लिए न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। श्रोताओ, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे आपसी संबंधों और हमारी दैनिक जीवन के कार्यों को भी प्रभावित करती है और इन्हीं बातों से प्रभावित भी होती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर तरीके से हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष साइकेट्री डिपार्टमेंट, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका रेडियो आजाद हिंद में।
3: नमस्कार।
2: प्रश्न यही उठता है दिमाग में कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य है क्या?
3: जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ऐसा नहीं है कि हमें बीमारी नहीं है इसका नाम स्वस्थ है। ये एक स्थिति है जहाँ पे हम अच्छा महसूस करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल सामाजिक रूप से। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य हम तब कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को पहचान पाता है, अपने प्रतिदिन के तनाव को हैंडल कर पाता है, समाज में अपना योगदान दे पाता है और बेहतर एक तरह से अपना सब कुछ काम कर पाता है, उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। मानसिक रोग ना होना उसका एक फैक्टर है
2: जी।
3: सिर्फ मानसिक रोग ना होने की वजह से ही वह मानसिक स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। तो इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबींग
2: जी,
3: वेयर एनीवन रिकॉग्नाइजेस हिज पोटेंशियल, वर्क्स प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कैन हैंडल डे टू डे स्ट्रेस।
2: यानी आपका कहने का मतलब है कि मानसिक अस्वस्थता जो है वो एक परिस्थिति है, बीमारी नहीं है।
3: देखिए, एक तरफ मानसिक स्वास्थ्य है
2: जी,
3: फिर हमें कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, और अगर हम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझकर उसे दूर नहीं कर पाते हैं तो हमें मानसिक रोग भी हो सकते हैं।
2: अच्छा,
3: तो एक स्पेक्ट्रम है जिसके एक छोर पर मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है,
2: हाँ जी,
3: दूसरे छोर पर पूरी तरह से मानसिक बीमार व्यक्ति है
2: जी,
3: और बीच में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं।
2: कितने प्रतिशत मानसिक रोगों से लोग ग्रस्त हैं, अनुमानित क्या है ये आंकड़ा?
3: इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होते हैं जिसे बोलते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स।
2: हाँ जी।
3: कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, घबराहट से संबंधित रोग है, नींद से संबंधित रोग है,
2: हाँ जी,
3: या पर्सनैलिटी से संबंधित रोग है, या कुछ कहते हैं हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स या सोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। और एक होते हैं जिसे कहते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जहां आपको देखने में लगे कि व्यक्ति थोड़ा विक्षिप्त है, इसका व्यवहार सामान्य नहीं है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स के जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो उसका व्यवहार हमें देखने में बहुत असामान्य प्रतीत नहीं होता है, पर जब हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट देखते हैं तो उनका आपको दूर से लगता है कि हाँ, इसमें कुछ तो असामान्यता है। टोटल जो प्रेवलेंस है करीब करीब 12.5 से 15% के बीच में प्रेवलेंस है मानसिक रोगों की।
2: अच्छा,
3: भारत में अगर मान लीजिए हमारी आबादी करीब 150 करोड़ के आसपास है
2: जी,
3: तो हमारे यहाँ कम से कम 20 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोग या समस्याएं हैं।
2: तो
3: इसमें से जो 1 से 2% है वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट है
2: जी,
3: और 10 से 12% जो है आबादी वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है
2: जी।
3: तो 12 और 2, इतना करीब करीब प्रेवलेंस रेट है।
2: क्या आत्महत्या भी जो है वो मानसिक अस्वस्थता का कारण है?
3: आत्महत्या परिणति है खराब मानसिक स्वास्थ्य की।
2: अच्छा,
3: कोई भी व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, जो व्यक्ति अपने, जैसे हमने जो डेफिनेशन बताई, अपने स्ट्रेस हैंडल कर पा रहा हो, जो समाज के प्रति योगदान दे पा रहा हो, जो अपनी योग्यता को समझ पा रहा हो, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। कई बार पारिवारिक तनाव की वजह से आत्महत्या हो जाती है
2: जी,
3: पर वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ही बिगाड़ती है। कई बार मानसिक रोग कारण होते हैं आत्महत्या का, जैसे कि डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, सिज़ोफ्रेनिया की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, नशे की लत की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है
2: जी।
3: तो आत्महत्या डायरेक्ट कारण भी होती है, पारिवारिक समस्याओं की वजह से होती है
2: जी।
3: फिर लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो हम एग्जाम में फेल हुए, या हमारा ब्रेकअप हो गया
2: जी,
3: या हमारी कोई आर्थिक हानि हो गई, फसल का नुकसान हो गया, या कोई और बड़ी हानि हो गई जिसकी वजह से आमतौर पर हम आत्महत्या पाते हैं
2: जी,
3: वो अल्टीमेटली हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती हैं
2: जी।
3: हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आता
2: जी,
3: ऐसा लगता है जैसे आगे भी सब कुछ अंधकारमय है। आत्महत्या इंसान उस अवस्था में करता है जब उसे लगता है आगे भी कुछ ठीक नहीं होने वाला है
2: जी।
3: तो इसी कारण ये कहा जा सकता है कि आत्महत्या जो है और मानसिक स्वास्थ्य आपस में बहुत लिंक्ड हैं
2: जी,
3: और खराब मानसिक स्वास्थ्य की वजह से ही आत्महत्या होती है
2: जी। यदि मानसिक स्वास्थ्य को हम सुधार लें तो आत्महत्या का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा
3: जी। इसमें ये समझना जरूरी है कि समस्याएं जो होती हैं टेम्परेरी होती हैं, कोई भी समस्या लाइफ में आती है वो थोड़े समय बाद अपने आप सॉल्व हो जाती है, उसका कोई ना कोई हल निकल जाता है। इवन कई बार आपने ट्रैफिक जैम भी देखे हो जहाँ इंसान कई बार 3-3 घंटे फंसा रहता है
2: जी।
3: तो आप देखेंगे 3-4 घंटे बाद ट्रैफिक जैम क्लियर हो जाता है।
2: हाँ जी।
3: पर उस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए व्यक्ति को लगे कि ये ट्रैफिक जैम कभी क्लियर होगा ही नहीं और इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं, तो ये वैसी ही अवस्था है जैसा एक कई बार जाम में फंसा हुआ व्यक्ति सोचे कि मेरे को आगे कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, शायद आगे सब कुछ ठीक होगा ही नहीं। तो अगर उस समय उसे किसी भी तरीके से रोका जा सके, क्योंकि आत्महत्या भी एक तरह से फॉर द टाइम बीइंग इम्पल्स आता है कि मुझे कर लेना चाहिए
2: जी।
3: उस समय अगर उसकी देखभाल कर ली जाए, उसे अकेला ना छोड़ा जाए, उसका उचित उपचार हो जाए
2: हाँ जी,
3: तो उस आत्महत्या से बचा जा सकता है। तो आत्महत्या या सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। अगर आप आंकड़े देखेंगी तो वर्ष 2018 के अंदर करीब 1,34,000 लोगों ने भारत के अंदर आत्महत्या से अपने प्राण गंवाए। ये आंकड़ा बढ़ के 2019 में 1,39,000 तक पहुंचा। 2020 में जब कोविड आया तो ये आंकड़ा एकदम से बढ़ा और 1,53,000 पे पहुंच गया
2: जी।
3: 2021 में 1,53,000 से 1,64,000, क्योंकि उस समय भी कोविड की भयावहता चल ही रही थी
2: जी।
3: और 2022 के अंदर 1,71,000, तो ये इतनी गति से बढ़ रहा था। अभी हाल ही के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपने लेटेस्ट जो आंकड़े हैं 2023 के जारी किए हैं
2: जी,
3: जिसके अंदर 1,72,000 के आसपास व्यक्तियों ने आत्महत्या की वजह से प्राण गंवाए हैं। और इसमें दुख की बात ये भी है कि जो मध्य प्रदेश है, हमारा स्टेट है
2: हाँ जी,
3: वो टॉप 3 में है, वो 3rd रैंक पे है। तो करीब 15,000 व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में अपने प्राण गंवाए हैं आत्महत्या की वजह से।
2: देखिए, यदि इस क्षणिक आवेश को यदि रोका जा सकता है तो आत्महत्या का प्रतिशत काफी कम हो जाएगा। एक बात ये, आप कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं जैसे सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये चीजें जो क्या है, आप क्या ये मानसिक अवस्था के प्रकार है, अस्वस्थ मानसिक अवस्था के?
3: कोई भी व्यक्ति, उसे लगता है कि कई बार उसे उदासी है, पर हर उदासी डिप्रेशन नहीं है
2: जी।
3: डिप्रेशन हम तब कहते हैं जबकि किसी के मन की उदास अवस्था 2 सप्ताह से ऊपर की हो।
2: अच्छा।
3: 2 सप्ताह से ऊपर व्यक्ति का मन उदास रह रहा है, उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उसे जो चीज पहले प्लेजर देती थी, आनंद देती थी, वो उसे आनंद नहीं दे रही है। उसकी नींद असामान्य हो गई है, उसकी भूख असामान्य हो गई है, या तो कम हो गई है या ज्यादा हो गई है
2: जी।
3: उसके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं
2: जी।
3: जब ये लक्षण आते हैं
2: जी,
3: या एक तरह से कहते हैं वो आपको एकदम सुस्त दिखाई देता है, आप डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जैसे ये चल फिर नहीं रहा, ये कोने में सुस्त गुमसुम सा बैठा है
2: जी।
3: तो जब इस तरह के सारे सिम्टम्स आते हैं तब उसे डिप्रेशन कहते हैं
2: जी।
3: कई बार इंसान को भ्रम होता है कि मैं उदास हूँ इस कारण मैं डिप्रेशन में हूँ, पर डिप्रेशन एक क्लिनिकल बीमारी है जिसका की जो डायग्नोसिस है वो साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है
2: जी।
3: वैसे ही सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है। सिजोफ्रेनिया के व्यक्ति में कई बार कुछ अलग अलग तरह के भ्रम या डिल्यूजन्स होते हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई मारने की साजिश रच रहा है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या मेरे वाइफ का या मेरी गर्लफ्रेंड का किसी और से अफेयर चल रहा है, तो ऐसे जो बिलीफ्स हैं, गलत बिलीफ्स हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं
2: जी, शक,
3: और जो किसी और समझाने से ठीक नहीं होते
2: जी, जी।
3: तो डिल्यूजन्स हो सकते हैं। फिर कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देती है जो व्यक्तियों को वैसे नहीं आती।
2: अच्छा।
3: ऐसे लोग उसके बारे में बात करें, ऐसी आवाजें उसे सुनाई देने लग जाती हैं।
2: हुँ।
3: फिर कई बार जो व्यवहार होता है वो बहुत विकृत सा हो जाता है, वो अपना स्वयं का देखभाल नहीं कर पाते हैं, दिनों दिनों तक नहाते नहीं है, गुमसुम रहते हैं, तो ये भी सब सिजोफ्रेनिया के लक्षण हो सकते हैं।
2: तो ये सब अवस्थाएं हमारे अंदर आती क्यों है, इसका कारण क्या है?
3: देखिए, जो मानसिक रोग हैं उनका एक जो डिजीज डेवलप करने का मॉडल है उसे हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल
2: जी।
3: तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पहला, वो है बायोलॉजिकल।
2: अच्छा।
3: पहला कारण है जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस। अच्छा।
2: यानी अनुवांशिक भी हो सकता है। अनुवांशिक,
3: हमारे अंदर सभी चीजें अनुवांशिक हैं एक तरह से। हमारे स्किन के कलर से लेके, हमारी हाइट से लेके, हमने जो भी अपनी लाइफ में मिला है हमें, वो अपने माता पिता के जीन्स से ही मिला है
2: जी।
3: तो डायबिटीज भी उतनी ही अनुवांशिक है जितनी कि सिज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन।
4: ओके।
3: बीमारी के दोनों फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सबसे पहला तो जेनेटिक्स कारण है, फिर हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका आपस में जो कम्युनिकेशन है वो कुछ केमिकल्स के थ्रू होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो इम्बेलेंस होते हैं वो मानसिक रोग करते हैं।
4: अच्छा।
3: अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है जिनसे अलग अलग तरीके के मानसिक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक कारण भी होते हैं। मेरी लाइफ में कोई नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, कोई किसी की फैमिली में डेथ हो गई, या मेरी नौकरी छूट गई
4: जी,
3: या मेरा ब्रेकअप हो गया, या मैं एग्जाम में फेल हो गया
4: जी।
3: ये सब वो कारण है जो बीमारी को एकदम से बढ़ा देते हैं। बीमारी हो सकता है हमारे शरीर के अंदर कहीं छुपी हुई हो
4: जी,
3: पर जब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो कई बार वो कारण एकदम से उभर के सरफेस में आ जाते हैं। फिर हर इंसान की स्ट्रेस को या तनाव को हैंडल करने की स्किल्स हैं, कोपिंग स्किल्स हैं। कई बार हमारी कोपिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, हम खान पान पे ध्यान नहीं देते, हमारी नींद के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हमारी कोपिंग स्किल्स वीक हो जाती हैं और उस वजह से भी कई बार मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट भी इम्पोर्टेंट है।
4: तो मतलब जैसे भी हमें मालूम पड़ता है सर कि कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो फिर हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये अस्वस्थ है और हमें परामर्श की जरूरत है, चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है?
3: किसी भी व्यक्ति के अगर आपको व्यवहार में बदलाव नजर आता है
4: जी,
3: अगर कोई गुमसुम रहने लगा है, कोई ज्यादा बात करने लगा है, कोई शक करने लगा है
4: जी,
3: किसी की नींद कम हो रही है, या वो खाना नहीं खा रहा है टाइम से, या वो नशा अधिक कर रहा है, या वो छोटी छोटी बातों पर चिंता अधिक कर रहा है, घबरा जाता है
4: जी,
3: तो अलग अलग तरह के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। तो एक जैसे बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, उसके अंदर व्यक्ति कई बार बार बार हाथ धो रहा होता है या बार बार चीजों को चेक कर रहा होता है।
4: ओके।
3: तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं, पर जो ब्रॉडली हमने बताया कि नींद के अंदर जो चेंजेस आते हैं, व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं
4: जी,
3: नशा जो नशे की जो प्रवृत्ति है
4: जी, जी।
3: वो ये सब अगर किसी में हो रही है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, या आत्महत्या के तो अगर किसी में विचार भी आ रहे हैं तो वो भी मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को हमें अतिशीघ्र मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक
4: जी
3: इनमें से किसी के पास अवश्य लेके जाना चाहिए ताकि उसका उचित डायग्नोसिस और उपचार हो पाए।
4: सर एक चीज आती है, अलग अलग वर्गों में अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है, जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों की मानसिक अस्वस्थता हमें कैसे पता चलती है?
3: आजकल अगर हम देखें तो आपने कभी अखबार पढ़ा हो तो कई बार ऐसी खबर आती है कि 6 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली
4: जी,
3: 8 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, वो बहुत चिंताजनक है।
4: हाँ जी।
3: बच्चों के अंदर जो आमतौर पे डिसऑर्डर्स मिलते हैं वो एक होता है जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
4: अच्छा।
3: जिसके अंदर बच्चा जो है उसकी अटेंशन स्पैन कम होता है, जिससे वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो जाता है और वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ऐसा एकदम भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो एक ये बीमारी है। दूसरी बच्चों से संबंधित कई बार होता है कि बच्चों में बुद्धि का विकास बराबर नहीं हो पाया
4: जी।
3: तो जैसे मान लीजिए माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है या मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, मंद बुद्धि जिसे कह सकते हैं, तो वो समस्याएं कई बार बच्चों में देखने को मिलती है
4: जी।
3: फिर बच्चों में भी आजकल कॉम्पिटिशन और पीयर प्रेशर इतना हो गया है कि उनमें भी जो बीमारियां हम पहले मानते थे बड़ों में ही मिलती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ओसीडी, वो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वो बच्चों में भी हमें देखने को मिल रही है
4: जी, जी।
3: तो बच्चों में भी कई बार अर्ली ऑनसेट साइकोसिस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो बच्चों में भी इस तरह की समस्याएं मिल सकती हैं।
4: तो इसका भी चिकित्सकीय समाधान है?
3: बिल्कुल, इनका भी उचित चिकित्सकीय या मनोवैज्ञानिक समाधान है।
4: हमने बच्चों की बात की, ऐसे ही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: महिलाओं के अंदर कई बार जो पीरियड्स का टाइम होता है उसके जस्ट पहले उनके मूड के अंदर कुछ चेंजेस रहते हैं जिसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। कभी रोने जैसा मन होता है, या इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, या उदासी जैसा लगता है, खाली खाली सा लगता है
4: जी।
3: तो वो समस्याएं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में कहलाती है। इसके अलावा जब हमारी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद करीब 50-70% महिलाओं को पहले सप्ताह के अंदर पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज मतलब रोने जैसा मन, उदासी, जो डिप्रेशन जितनी गंभीर नहीं है पर कुछ दिनों तक रहती है। फिर 50-70% में पोस्टपार्टम ब्लूज हैं तो करीब 8-10% महिलाओं के अंदर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण भी आते हैं।
4: अच्छा।
3: डिप्रेशन के लक्षण जैसे बाकी लोगों में आते हैं कि मन उदास हो गया है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जो चीज पहले आनंद दे रही थी उसमें अब मजा नहीं आता है, नकारात्मक विचार आते हैं, एक तरह से हम थोड़ा सा इनएक्टिव से हो गए हैं और 1% या 0.5% के अंदर कई बार गंभीर साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं, जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस।
4: अच्छा।
3: इसके अलावा महिलाओं को क्योंकि अपनी लाइफ को वर्क और होम के बीच में बैलेंस करने की जरूरत पड़ती
4: जी,
3: है
4: जी।
3: क्योंकि समाज आगे बढ़ा है पर महिलाओं ने जैसे बाहर के काम करने चालू कर दिए पर पुरुष अभी भी घर उतना अच्छा नहीं संभाल पाते जितने महिलाएं संभाल पाती हैं। तो महिलाओं को क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ऑफिस में भी कई बार अच्छा माहौल नहीं होता और घर में भी कई बार काम का बोझ होता है
4: जी।
3: तो उस वजह से वो कई बार ज्यादा स्ट्रेस फील करती हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा मिल सकते हैं
4: जी। तो जैसे हमने बच्चों की बात की, महिलाओं की बात की, ऐसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है वृद्धों का
3: जी
4: ना। तो बुजुर्गों में ये जो मानसिक स्वास्थ्य जो है जैसे अल्जाइमर, तो अल्जाइमर भी क्या मानसिक अस्वस्थता में आता है?
3: बुजुर्गों में कई तरह के मानसिक विकार मिल सकते हैं।
4: हाँ जी।
3: और हमारी आबादी जैसे आज की तारीख में करीब 10-12% हमारी आबादी ऐसी है जो वृद्ध है
4: जी।
3: पर जैसे जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो रही है आने वाले टाइम में हो सकता है हमारी 25-30% आबादी वृद्ध रहे, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में है
4: जी।
3: जैसे जापान में देखेंगे उनकी करीब 35% आबादी वृद्ध है। तो वृद्धावस्था में कई तनाव आते हैं जो व्यक्ति को लाइफ में पहले वो कर पा रहा था, उसका शरीर साथ दे रहा था, वो काम कर पा रहा था, शरीर की कई बीमारियां आई तो वो काम करना कम हो गया तो उसका मन खराब रहना चालू हुआ। उसने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया पर बच्चे शायद उतनी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो उस वजह से भी व्यक्ति उदास रहता है, खिन्न रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है कई बार। तो वृद्धावस्था में डिप्रेशन के प्रकरण ज्यादा देखने को मिलते हैं, इवन सुसाइड के केसेस भी बढ़ जाते हैं वृद्धावस्था में। और क्योंकि कई बार परिवार वाले हो सकता है पैसा तो फिर भी शायद वृद्ध व्यक्ति के ऊपर खर्च कर दें, उसके कपड़े ला दें या उनको कहीं ले जाएं, पर टाइम की कमी है और वृद्ध व्यक्तियों को लगता है कि उनके साथ कोई ना कोई अगर समय बिता सकता है
4: जी।
3: तो उसके कारण वो अकेलापन फील करते हैं। और वृद्ध व्यक्ति में एक चीज देखने में आती है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं उनमें से अगर दोनों जीवित हैं तब तो वो एक दूसरे की देखभाल कर लेते हैं।
4: हाँ जी।
3: और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के ऊपर बड़ी भारी समस्या आती है
4: जी।
3: कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो चला जाता है। तो वृद्ध जनों के मानसिक स्वास्थ्य की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए।
4: मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए और हमारे घर वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं?
3: लाइफ में हमें एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए अपनी
4: जी।
3: अगर हम आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आगे से आगे की तृष्णा जो है वो हमें एक तरह से तनाव देती है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है पर्याप्त नींद, न्यूट्रिशियस डाइट
4: जी,
3: कुछ एक्सरसाइज, अगर लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है तो उसे हैंडल करने के लिए अच्छी कोपिंग मैकेनिज्म, नशे से दूरी
4: जी,
3: और समाज के अंदर एक्टिव योगदान। अगर हम रिलेशनशिप्स में अच्छे से रह रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कम निर्भर हैं, तो हम मानसिक रूप से ज्यादा अच्छा स्वस्थ रह पाएंगे।
4: तो आपने जो टेक्निक्स की बात की, कोपिंग टेक्निक्स की, वो क्या है?
3: जब इंसान के लाइफ में तनाव आता है तो वो उसे किस तरीके से हैंडल करता है
4: जी।
3: कोई व्यक्ति होता है जो सोचता है कि चलो आज मेरे को लाइफ में बुरा दिन था, मैं 2 पैग अल्कोहल ले लेता हूँ, उससे शायद मेरे को शांति मिले
4: जी।
3: तो ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हुआ। कुछ लोग काम के तनाव को चाय पी के कम कर रहे होते हैं।
4: हाँ जी।
3: तो वो भी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है समस्याओं को समझना
4: जी,
3: कि भाई हर समस्या शायद आपकी अपनी नहीं है, क्या मुझे अभी उसके ऊपर निर्णय लेना है या उसको टैकल करना है और क्या मैं बाद में कर सकता हूँ। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म। फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें कुछ ऐसा समय देना चाहिए कि जिससे हम रिलैक्स कर पाए। तो योगा इज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म, प्राणायाम इज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म। ऑफिस का तनाव ऑफिस के बाहर तक नहीं आना चाहिए, ऑफिस के तनाव को हमें ऑफिस में छोड़ के आना चाहिए।
4: हाँ जी।
3: अगर वो तनाव हम घर पे लाते हैं तो हम घर के वातावरण को और दूषित और खराब करते हैं।
4: हाँ जी।
3: और जिससे हमारे बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें एक तरह से समझदारी से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और तनाव को जितना हद तक हम बेहतर प्रबंधन कर पाए या लिमिट कर पाए
4: जी,
3: उतना हमारे लिए अच्छा है।
4: सर, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, आपके पास आता है, तो आप उसका क्लिनिकली उपचार करते हैं या फिर साइकोलॉजिकली उपचार करते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है?
3: जैसे कोई मरीज हमारे पास आया, हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्या उसके रोग कब उत्पन्न हुए, उसका एग्जामिनेशन या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, बीमारी की गंभीरता के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इसे किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी फिजिशियन के पास गया, उसका ब्लड शुगर 125 है जो कि सामान्य से थोड़ा ऊपर है, तो हमें क्या सलाह मिलेगी कि भाई खाने में ये चीजें कम खाओ, वॉक करो, अभी तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। पर वही पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आया और उसका शुगर 350 है, तो फिर जो सलाह थी डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, वो तो मिलेगी, पर दवाई के लिए वेट नहीं किया जाएगा, दवाई चालू करनी पड़ेगी।
4: जी।
3: तो अगर माइल्ड डिप्रेशन का पेशेंट है तो सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से भी उसका उपचार हो सकता है, पर आमतौर पर क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता कम है तो मरीज बीमारी बढ़ा के ही आता है। तो जब बढ़ी हुई बीमारी के अंदर मरीज आता है तो उसे हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। नियमित इलाज से मरीज की हालत में सुधार आता है, जैसे जैसे मरीज की हालत में सुधार आता है उसकी दवाइयों को धीरे धीरे कम करके बंद करने की दिशा में जाया जाता है।
4: अच्छा।
3: व्यक्ति नियमित इलाज करता है तो उसकी दवाई समय के साथ में बंद हो जाती है, पर इसमें भी समस्या यह है कि कई बार मरीज अपने आप ही दवाई बंद कर देता है या रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं आता है, तो ऐसे में बीमारी थोड़ी और लाइलाज हो जाती है।
4: हमें ये कैसे पता चलता है कि अब व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है?
3: उसके व्यवहार के ऑब्जर्वेशन से
4: जी,
3: उसके जो घर वाले उसके बारे में हमें हिस्ट्री देते हैं उससे, और एक मानसिक स्थिति परीक्षण मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जो मरीजों पर किए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर।
4: अच्छा।
3: कुछ इन्वेंटरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कुछ बैटरीज होती हैं जो लगाई जाती हैं, जिनके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि बीमारी की क्या अवस्था है और क्या उपचार दिया जाना चाहिए।
4: अपने आप को कैसे जान सकते हैं कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ?
3: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने
4: जी।
3: अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो मध्य प्रदेश का है उसमें हमने और हमारे कुछ सहयोगियों ने मिलकर एक ऐप तैयार किया, एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसका नाम है मनहित।
4: मनहित,
3: मनहित
4: जी।
3: आप वो मनहित ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट का कॉलम है
4: जी।
3: तो जैसे आप सेल्फ असेसमेंट क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको हाँ ना में क्लिक करना है। उसमें कई सारी हमने अवेयरनेस मटेरियल जानकारी भी डाली है। तो एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके माध्यम से हम स्वयं का मानसिक स्वास्थ्य जज कर सकते हैं।
4: अच्छा।
3: उस मनहित ऐप को हमने टेलीमानस एक तरह से राष्ट्रीय हेल्पलाइन सर्विस है।
4: अच्छा।
3: जो कि केंद्र सरकार की मदद से चल रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उसे संचालित कर रहा है
4: जी।
3: उसका नंबर है 14416।
4: एक बार आप फिर दोहरा दीजिए तो अच्छा रहेगा सर।
3: 14416 नंबर है जिसके अंदर ये हेल्पलाइन चलती है टेलीमानस। इसके अंदर ट्रेन्ड काउंसलर्स जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।
4: तो बहुत ही नई जानकारी हम लोगों को मिली है, क्योंकि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रख लेते हैं सर, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमारे पास शायद समय की कमी है और जागरूकता की सबसे ज्यादा कमी है। आप हमारे श्रोताओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देंगे सर?
3: भरपूर नींद लें, पौष्टिक आहार खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज अवश्य करें, तनाव प्रबंधन करें, स्ट्रेस में ना रहें और नशे से दूर रहें। और नशे में आजकल मोबाइल भी आ गया है
4: जी,
3: तो मोबाइल को भी लिमिट कीजिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर JP अग्रवाल, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी पूर्वा। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद बंबई से जहाज में बैठे और कोलंबो, हांगकांग, कैप्टन तथा जापान के रास्ते प्रशांत महासागर पार कर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित कनाडा के बैंकवर में पहुंचे। यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी देखा, सुना, जाना, समझा था उसे पत्रों के द्वारा विभिन्न लोगों को बताया। वे रास्ते में जिन देशों में उतरे वहां के लोग, समाज, धर्म तथा राजनीति को उन्होंने बड़े गौर से देखा था और समझा था। कुछ चीजें उन्हें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी और कुछ हास्यमय लगी। बैंकॉक से उनकी रेल यात्रा शुरू हुई। सफर लंबा था। 23 जुलाई को वे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से पूर्व की ओर चल पड़े। रास्ते में विशाल रॉकी पर्वतमाला पार करनी पड़ी और बीच में पड़ाव था कनाडा का विनिपेग नगर। वहां से वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे और तारीख थी 30 जुलाई सन 1893।
1: महानगर शिकागो विशाल सागर सम मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। विश्व मेले के उपलक्ष में वहां विशाल जन समागम हुआ था। स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देश देशांतर से आए लोगों की भीड़ देखी, पर कोई भी परिचित चेहरा नजर नहीं आया। अनजान शहर में अपने सामान के साथ वो परेशान थे। कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी निश्चित ना था। इधर उन्हें नया जानकर कुली भी उन्हें ठग रहा था। अजीब गरीब पोशाक पहने इस विचित्र से दिखने वाले व्यक्ति को देख कोई हंसी उड़ाता, कोई ताली बजाता और दुष्ट लड़कों का दल पीछे लगकर उन्हें तरह तरह से तंग करता रहा। ऊपर से भूख और ठंड, आखिरकार किसी होटल में ठहरना ही उन्हें उचित लगा, पर होटल का खर्च उनके हिसाब से अत्यधिक था।
0: शिकागो में वे 12 दिन रहे थे। पहुंचने के दूसरे ही दिन वे घूम घूम कर विश्व मेला देखने लगे। वहां विभिन्न देशों की शिल्प रचनाएं तथा कला कौशल का समावेश था। दिन भर वे मेले में घूमकर शाम को थकार कर होटल वापस आते और अगले दिन फिर घूमने निकल पड़ते। वहां के ऐश्वर्य का प्रदर्शन और वहां की सफाई व्यवस्था, वे सब कुछ देखते और उससे कुछ सीखते।
1: परंतु स्वामी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि अनजान लोग भी उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते। इन कुछ दिनों में स्वामी जी के साथ जिन लोगों की पहचान हुई उनमें से दो का उल्लेख उनके 20 अगस्त के पत्र में मिलता है। उस पत्र में शिकागो के अपने अनुभवों के बारे में वो लिखते हैं।
2: वहां मैं प्रायः हर रोज मेला देखने जाता था। वो एक विराट आयोजन है। उसे ठीक ढंग से देखने में कम 10 दिन लगते हैं। वरदा राव ने जिस महिला से मेरा परिचय करा दिया था वे और उसके पति शिकागो समाज के बड़े गणमान्य लोग हैं। उन्होंने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा बर्ताव किया, परंतु यहाँ के लोग जो विदेशियों का सत्कार करते हैं वो केवल औरों को दिखाने के लिए है। आर्थिक सहायता के समय प्रायः सभी मुंह मोड़ लेते हैं। इस वर्ष यहाँ भारी अकाल पड़ा है, व्यापार में सभी को नुकसान हो रहा है।
1: शिकागो में हुई एक विचित्र घटना का स्वामी जी ने उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि इस बीच स्वामी जी ने अनेक लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया था।
2: हाल में शिकागो में एक बड़ा तमाशा हुआ। कपूरथला के राजा यहाँ पधारे थे और शिकागो समाज के कुछ लोग उन्हें सम्मान दे रहे थे। मेले में राजा के साथ मेरी मुलाकात हुई, पर वे तो अमीर आदमी ठहरे, मुझ फकीर के साथ बातचीत क्यों करते। उधर एक धोती पहने हुए महाराष्ट्री ब्राह्मण कागज पर नाखून के सहारे बनी तस्वीरें मेले में बेच रहा था। उसने अखबारों के संवाददाताओं को उस राजा के विरुद्ध तरह तरह की बातें कह दी थी। उसने कहा था कि आदमी गरीब वर्ग का है, ये राजा लोग क्रीतदास के समान होते हैं और बहुधा ये दुराचारी होते हैं आदि आदि। और यहाँ के सत्यवादी संपादकों ने, जिनके लिए अमेरिका मशहूर है, इस आदमी की बातों को कुछ महत्व देने के लिए अगले दिन के अखबारों में स्तंभ पर स्तंभ रंग डाले, जिसमें उन्होंने भारत से आए ज्ञानी पुरुष का अर्थात मेरा वर्णन किया और मेरी प्रशंसा के पुल बांधकर मेरे मुख से ऐसी कल्पित बातें निकलवा डाली जिन्हें मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन सब बातों को उन्होंने मेरे मुख से निकला हुआ बता दिया। इससे शिकागो समाज को ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने तुरंत राजा का परित्याग कर दिया। इन मिथ्यावादी संपादकों ने मेरे माध्यम से मेरे ही एक देशवासी को आघात पहुंचाया। खैर, इससे यह भी समझ में आ जाता है कि इस देश में धन और उपाधियों की चमक दमक की अपेक्षा बुद्धि का सम्मान अधिक है।
0: संवाददाता सचमुच स्वामी जी से आकृष्ट हो गया था। उनके बारे में और विस्तार से जानने के लिए उसने मेले में उनसे बातचीत भी की थी। होटल के मालिक से भी स्वामी जी के बारे में जानकारी जुटाई थी। मेला भूमि में अनेक लोगों से उनकी बातचीत होती थी, पर स्वामी जी को वहां कोई मित्र ना मिला। फिर आर्थिक सहायता का तो कहना ही क्या, परंतु एक बात का उन्हें पूरा विश्वास था कि जब विधाता ने उन्हें यहां भेजा है तो वे ही उनके लिए मार्ग बना देंगी।
1: एक दिन स्वामी जी धर्म महासभा के बारे में पूरी जानकारी लेने वहां के सूचना केंद्र में गए। उन्हें जब सूचना मिली कि धर्म महासभा तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में होगी तो वो हतप्रभ रह गए। उन्हें और भी जानकारी मिली कि उपयुक्त परिचय पत्र आदि के ना होने पर उस सभा में भाग नहीं लिया जा सकेगा और प्रतिनिधि बनने के लिए आवेदन करने की तारीख भी निकल चुकी है। स्वामी जी का दिल टूट सा गया। उनका वहां आना व्यर्थ हो गया। वे हताश हो गए।
0: एक छोटी सी सहज सी बात पर उनका ध्यान कभी गया ही नहीं था कि प्रतिनिधि होने के लिए किसी संप्रदाय का बिल्ला चाहिए था। अपने आप कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने सारे विद्वान और बुद्धिमानों ने उन्हें यहाँ भेजा है, पर किसी के दिमाग में यह बात आई न थी। भंगनी निवेदिता ने इसी प्रसंग पर लिखा है,
3: भक्तों के असीम श्रद्धा पूर्ण मन में ये बात कभी उदित ही नहीं हुई कि मानव जाति के लिए जो असंभव है वे ऐसा ही कुछ दावा कर रहे थे। उन लोगों ने सोचा था कि विवेकानंद का केवल वहां पहुंच जाना ही आवश्यक है और उपस्थित होते ही उन्हें सारे सुयोग अवश्य मिल जाएंगे। अपने शिष्यों के समान ही स्वामी जी भी जागतिक रीति नीतियों के संबंध में बड़े अनजान थे और एक बार जब उन्हें विश्वास हो गया कि इस कार्य के लिए वे दैवी रूप से निर्धारित किए गए हैं तो उन्हें अपने पथ में कोई भी बाधा नहीं दिखाई पड़ी। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आकर जब विश्व के शक्ति एवं ऐश्वर्य के दृढ़ रक्षित द्वार में प्रवेश करने हेतु उन्होंने पांव बढ़ाए तो उनके साथ कोई उचित परिचय पत्र न था और न ही किसी ने उनके बारे में घोषणा की। उन दिनों भारतीय समाज की पूर्ण संगठनहीनता का क्या ये निश्चित प्रमाण नहीं है?
0: इधर भक्तों द्वारा दिया गया धन भी शीघ्रता से समाप्त हो रहा था। होटल और खाने पीने का खर्च अत्यधिक था। अपने को संकट में समझकर उन्होंने 2 अगस्त को आला सिंह के नाम एक पत्र लिखकर मद्रास के भक्तों को सूचित किया।
2: यहाँ पर अपरिहार्य व्यय भी मेरे लिए अत्यधिक है। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे 170 पौंड के नोट और 9 पौंड नकद दिए थे। अब 130 पौंड ही बचे हैं। प्रतिदिन औसतन 1 पौंड खर्च होता है। यहाँ के एक चुरुट की कीमत ही हमारे यहाँ के 8 आने हैं। अमेरिका वासी इतने धनी हैं कि वे पानी के समान पैसे बहाते हैं और इन्होंने कानून बनाकर सभी चीजों का दाम इतना अधिक रखा है ताकि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी भी तरह उनके स्तर तक ना पहुंच सके। यहां आने के पूर्व मैं जो सुनहरे स्वप्न देखा करता था वे अब टूट चुके हैं। यहां मुझे अति विषम परिस्थितियों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। सैकड़ों बार इच्छा हुई कि इस देश से वापस चल दूं, परंतु मैं दृढ़ संकल्प हूं और मुझे भगवान का आदेश मिला है। मुझे नहीं दिख पड़ता तो ना सही, पर उनकी आंखें तो सब कुछ देख रही हैं। चाहे मरूं या जीवित रहूं, उद्देश्य पर अटल रहूंगा।
1: उनका लक्ष्य अटल रहा, विश्वास भी अटल था, परंतु वास्तविकता से आंखें मूंद लेने पर काम नहीं चलता। इस बंधु रहित शहर में बिना पैसे के रहना संभव नहीं था। शुभ चिंतकों ने उन्हें अमेरिका के पूर्वी छोर में स्थित बोस्टन नगर में चले जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां व्यय अपेक्षाकृत कम होगा। वे रेल से बोस्टन रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक सहृदय मित्र मिल गई। वे थी मिस कैथरीन एबर्ट सैनबॉर्न। वे मैसाचुसेट्स प्रांत के ब्रीजी मिडोस नामक कृषि क्षेत्र की मालकिन थी। कैथरीन सैनबॉर्न से मुलाकात के बारे में स्वामी जी ने लिखा,
2: इस समय मैं बोस्टन के समीप एक गांव में एक वृद्ध महिला का अतिथि हूँ। इनके साथ रेलगाड़ी में अचानक भेंट हो गई। इन्होंने मुझे अपने यहाँ आने और रहने का निमंत्रण दिया। यहाँ रहने से मुझे ये सुविधा है कि मेरा जो हर रोज एक पौंड के हिसाब से खर्च हो रहा था वो बच जाता है, और उनको ये लाभ होता है कि वे अपने मित्रों को बुलाकर भारत से आया हुआ एक अद्भुत जीव दिखा रही है। ये सब सहना ही होगा। अब मुझे अनाहार, जाड़ा और अपने अनोखे पहरावे के कारण रास्ता चलते लोगों की खिल्लियां, इस सब के साथ संघर्ष करते रहना होगा। परंतु प्रिय वत्स, ये निश्चित रूप से जान लेना कि कोई भी बड़ा कार्य कठिन परिश्रम तथा कष्ट स्वीकार के बिना नहीं हुआ है।
4: मिस सैनबॉर्न को यद्यपि स्वामी जी ने वृद्धा कहा था, पर अमेरिका वासियों के अनुसार वे वृद्धा नहीं बल्कि प्रौढ़ा थी। आयु थी 54 वर्ष। उनमें यथेष्ट उत्साह था और स्वामी जी को इधर उधर ले जाने में उन्हें मजा आता था। समाज में वक्ता और लेखिका के रूप में उनकी ख्याति थी। अतः उनके सहारे स्वामी जी को उस अंचल में एक शिक्षित और प्रतिष्ठित प्राध्यापक मिल गया था। इन्हीं की सहायता से वे डॉक्टर राइट से परिचित हुए और इसी सूत्र से उन्हें धर्म महासभा के प्रतिनिधि का स्थान मिला। बोस्टन में रहते समय उन्हें एक महिला प्रतिष्ठान का निमंत्रण मिला। वहां उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति विषय पर भाषण दिया। इसी प्रतिष्ठान के सदस्यगण विधवा और बाद में ईसाई धर्म में दीक्षित पंडिता रमाबाई को वे भारत में समाज सेवा के लिए आर्थिक सहायता दिया करते थे।
1: वहाँ के लोग स्वामी जी का नाम ठीक ठाक उच्चारण नहीं कर पाते थे। लोग उन्हें तरह तरह के विकृत नामों से पुकारते थे, विवेकानंद या केवल कानंद के नाम से वे जाने जाते थे। वहाँ उनकी मुलाकात कैथरीन सैनबॉर्न के चचेरे भाई श्री फ्रैंकलिन बेंजामिन से हुई। पहले तो उन्होंने भारतीय सन्यासी को संदेह की दृष्टि से देखा, पर बातचीत करने के बाद स्वामी जी के बारे में उनका मत परिवर्तन हो गया। श्री बेंजामिन बोस्टन के समाज में संवाददाता, लेखक, परोपकारी तथा विभिन्न सभा समितियों के पालक के रूप में परिचित थे। उनका स्वामी जी के प्रति आकृष्ट होना मायने रखता था। स्वामी जी ने अपने 20 अगस्त के पत्र में लिखा था,
2: याद रखना, ये ईसाइयों का देश है और यहाँ किसी अन्य धर्म या मत का प्रभाव मनु नहीं के बराबर है। संसार के किसी भी मतवादी का मुझे लेश मात्र भय नहीं। यहाँ मैं मेरी पुत्र ईसा की संतानों के बीच निवास कर रहा हूँ। प्रभु ईसा ही मेरी सहायता करेंगे। एक बात है, ये लोग मेरा हिंदू धर्म संबंधी उदार मत तथा नाजरत के अवतार के प्रति मेरा प्रेम देखकर खूब आकृष्ट हो रहे हैं। मैं उनसे कहा करता हूं कि गैलीली के उस महापुरुष के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही कि जैसे आप लोग ईसा को मानते हैं उसके साथ वैसे ही भारतीय महापुरुषों को भी मानना चाहिए। ये बात वे बड़े आदर के साथ सुनते हैं। अब तक मेरा काम इतना ही बना है कि मेरे बारे में वे कुछ जान गए हैं और चर्चा करते हैं। यहाँ पर इसी रीति से कार्य प्रारंभ करना होगा।
4: उन्होंने वहां के अच्छे रीति रिवाजों की तारीफ करके आगे लिखा कि
2: कल स्त्री कारागार की सुपरिटेंडेंट श्रीमती जॉनसन यहाँ पधारी थी। यहाँ पर कारागार नहीं सुधारशाला कहते हैं। अमेरिका में मैंने जो अद्भुत चीजें देखी हैं, उनमें से ये एक बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है। कैदियों के साथ कैसा सहृदय व्यवहार किया जाता है, कैसे उनका चरित्र सुधरता है और वे लौटकर पुनः समाज के उपयोगी अंग बन जाते हैं, ये सब बातें कितनी अद्भुत हैं, कितनी सुंदर हैं।
1: अमेरिका की व्यवस्थाओं को देखकर वे अपने देश की दुरावस्था के बारे में सोचकर दुखी हो गए। उन्होंने मद्रास के अनुयायियों को लिखा था,
2: ये सब सोचकर जब मैंने अपने देश की दशा सोची तो मेरे प्राण बेचैन हो गए। भारतवर्ष में निर्धनों, पतितों और साधारण लोगों के बारे में क्या हम लोग चिंता करते हैं? उनके लिए ना कोई अवसर है, न बचने की राह और ना ही उन्नति का कोई उपाय। भारत के निर्धनों, पतितों और पापियों का कोई साथी नहीं, कोई सहायक नहीं। वे चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं। वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं। क्रूर समाज जो उन पर लगातार चोटें कर रहा है, इसका परिणाम है गुलामी और पशुत्व। चिंतनशील लोग पिछले कुछ वर्षों से समाज की इस दुर्दशा को समझ रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे लोग इसका दोष हिंदू धर्म के मत्थे मढ़ रहे हैं। सुनो मित्र, प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य ज्ञात हो गया है। दोष धर्म का नहीं, उल्टे तुम्हारा धर्म तो तुम्हें सिखाता है कि संसार के सभी प्राणी तुम्हारी आत्मा के ही विविध रूप हैं। प्रभु ने मुझे दिखा दिया है कि इसमें धर्म का कोई दोष नहीं, वरन दोष उनका है जो हिंदू धर्म के अंतर्भुक्त होते हुए भी ढोंगी और दंभी हैं, जो परमार्थिक और व्यवहारिक सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रकार के अत्याचार के अस्त्रों का निर्माण करते रहे हैं।
4: लोग कहा करते थे कि स्वामी जी ने अमेरिकी समाज से प्रभावित होकर ही विदेशी भावधारा का भारत में प्रचार किया, परंतु स्वामी जी की मौलिकता इस बात में है कि वे तुलना के द्वारा रोग का निदान तथा चिकित्सा का विधान कर लेते थे। अमेरिका व समग्र पाश्चात्य जगत में उस समय तक वेदांत पर आधारित सामाजिक चिंतन अज्ञात था। यह स्वामी जी का ही अवदान है और उस चिंतन को केवल मन में सीमित न रख करके वे उसे कार्य में परिणित करना चाहते थे। अध्यात्म जगत के विचारों के साथ बाह्य जगत के व्यवहारों में कोई तालमेल नहीं रहेगा, यह वे सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें लगता था कि सामाजिक दुर्नीति, अत्याचार आदि के लिए धर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए उत्तरदायी है सत्ताधारी शासक वर्ग और धर्माचार्यों की स्वार्थ पर।
1: बोस्टन के उस गांव में मिस सैनबोर्न का आतिथ्य ग्रहण करने फलस्वरूप यद्यपि स्वामी जी का खर्च घट गया था, तो भी अन्य प्रकार के व्ययों से वे तब भी पीड़ित थे। हमें मालूम है कि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। इसके बारे में उन्होंने अपने पत्र में लिखा था,
2: जाड़ों का मौसम आ रहा है, मुझे सब प्रकार के गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी और यहाँ के निवासियों की अपेक्षा हम लोगों को अधिक कपड़ों की जरूरत पड़ती है। इस गांव से मैं कल बोस्टन जा रहा हूँ, वहाँ एक बड़े महिला क्लब में मुझे व्याख्यान देना है। बोस्टन जाकर पहले मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। वहाँ यदि मुझे अधिक दिन रहना पड़ा तो मेरी इस अनोखी पोशाक से काम नहीं चलेगा। रास्तों में मुझे देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ लग जाती है, इसलिए मुझे काले रंग का एक लंबा कोट पहनना होगा। केवल व्याख्यान देने के समय पहनने हेतु मैं एक गेरुआ पहनावा और पगड़ी रखना चाहता हूँ। ये पत्र तुम्हारे पास पहुँचने के पूर्व ही मेरे पास मात्र 60-70 पौंड बचे रहेंगे, अतः कुछ रुपए भेजने का भरसक प्रयास करना। अगर यहाँ पर कुछ प्रभाव डालना है तो इसके लिए कुछ दिन ठहरना आवश्यक है। यहाँ मुझे कुछ काल रहना होगा। इतने प्रयास के बाद मैं सहज ही इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहता। जितना भी हो सके तुम लोग मेरी मदद करो, और यदि ना भी कर सके तो भी मैं आखिर तक प्रयास करके देखूंगा। यदि तुम रुपए भेजकर मुझे कम से कम 6 महीने यहां रख सको तो आशा है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बीच मैं भी जो कोई सहारा सामने मिल रहा है उसी के सहारे तैरने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मैं अपने निर्वाह के लिए कोई उपाय ढूंढ सका तो तुरंत तुम्हें तार भेजूंगा।
4: उस समय स्वामी जी की हालत बड़ी ही चिंतनीय तथा भयावह थी। दर्जी के पास अपने कोट का ऑर्डर देकर के लौटने के बाद उसी पत्र में वे आगे लिखते हैं,
2: अभी अभी मैं दर्जी के पास गया था, जाड़े के कुछ कपड़ों के ऑर्डर दे आया। उसमें 300 रुपए या उससे अधिक खर्च आएगा, फिर भी ये बहुत अच्छे कपड़े ना होंगे, कुछ बेहतर से दिखेंगे बस। यदि तुम लोग मुझे यहाँ रखने के लिए रुपए ना भेज सको तो इस देश से लौट आने के लिए कुछ रुपए भेज दो। इस बीच यदि मेरे अनुकूल कोई शुभ खबर होगी तो मैं लिखूंगा या तार द्वारा सूचित करूंगा। समुद्री तार भेजने में प्रति शब्द 4 रुपए लगते हैं।
1: स्वामी जी के अमेरिका यात्रा से पहले हम खेतड़ी नरेश की सहायता का उल्लेख कर चुके हैं। बाद में भी उन्होंने स्वामी जी को नाना प्रकार की सहायता की थी। विदेश में स्वामी जी की अर्थाभाव की बात उन्हें मन्मथ भट्टाचार्य से पता चली थी। राजा ने तुरंत तार द्वारा 500 रुपए भेज दिए थे। आला सिंगा ने भी 300 रुपए का इंतजाम कर उन्हें भेज दिया था। स्वामी जी के 2 नवंबर के पत्र में 800 रुपए प्राप्त होने का उल्लेख है। बाद में वापस आकर मद्रास में व्याख्यान देते समय उन्होंने कहा था,
2: मैं अमेरिका तो पहुंच गया पर मेरे पास रुपए बहुत कम थे और वे शीघ्र ही समाप्त हो गए। इधर जाड़ा भी आ पहुंचा और मेरे पास केवल गर्मी के वस्त्र थे। उस घोर शीत प्रधान देश में सूझ नहीं रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि यदि मैं मार्ग में भिक्षा मांगने निकलता तो जेल भेज दिया जाता। उस समय मेरे पास केवल कुछ ही डॉलर बचे थे। मैंने अपने मद्रास वाले मित्रों के पास तार भेजा। ये बात थियोसोफिस्टों को मालूम हो गई और उनमें से एक ने लिखा, अब ये शैतान शीघ्र मर जाएगा, ईश्वर की कृपा से अच्छा ही हुआ, चलो बला टली।
4: स्वामी जी के जीवनीकारों ने लिखा है कि प्रमाण पत्र न होने से और पंजीकरण का दिन निकल जाने के कारण वे प्रतिनिधि नहीं हो सके थे, पर एक कारण और भी था। प्रतिनिधि बनने पर उन्हें अपने खर्च से काफी दिनों तक शिकागो में रहना पड़ा। यह सब सोचकर वे बोस्टन गए थे, पर तब भी विदेश में कार्य करने की आशा उनके मन में थी। एक पत्र में उन्होंने लिखा था,
2: पहले मैं अमेरिका में प्रयत्न करूंगा, यहां विफल होने पर इंग्लैंड में, और यदि वहां भी सफल न हुआ तो भारत लौटाऊंगा और भगवान के अगले आदेश की प्रतीक्षा करूंगा।
4: धर्म महासभा में शामिल न हो पाने के दुख से वे निराश जरूर हो गए थे, पर अमेरिका में अपनी भावी सफलता का आभास उन्हें शीघ्र ही मिलना आरंभ हो गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजने वाले हैं और रेडियो आजाद हिंद की प्रसारण सेवा का सफर आज आपके साथ यहीं तक। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते कल के कार्यक्रम आपको बता दें। कल सुबह सुनिए कार्यक्रम जीवन सौरभ, गुणों की महिमा। 7:13 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसका पुनः प्रसारण आप शाम 5 बजे सुन सकते हैं। भक्ति संगीत सुनिए सुबह 7:20 पर और पुनः प्रसारण 5:10 पर शाम को। सुबह 8 बजे और शाम को पुनः प्रसारण 6 बजे सुनिए वतन का राग कार्यक्रम का, श्री कृष्ण सरल की पुण्यतिथि पर आधारित है। 8:30 पर सुबह और पुनः प्रसारण 6:30 पर सुनिए इतिहास के पन्नों से रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास।

तो ये थी हमारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब दीजिए अपने रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती को अनुमति, सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।